मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 मिनट हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज खेत खलियान कार्यक्रम में वार्ता का विषय है बैंगन की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसका विविध रूपों में उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। बैंगन की उन्नतशील किस्मों में लंबे फल वाली जो किस्में हैं वे हैं पंजाब सदाबहार, पंजाब बरसाती, पूसा पर्पल लौंग, पंत सम्राट, काशी प्रकाश। गोल फल वाली किस्में हैं पंत ऋतुराज, अरुणा और संकर किस्में हैं काशी कोमल, पूसा संकर 5, पूसा संकर 1 और काशी संदेश। बैंगन की खेती के लिए गहरी दोमट भूमि जिसमें जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई और जल निकास का उचित प्रबंध हो सबसे अच्छी समझी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी में फल तो शीघ्र मिलता है लेकिन वानस्पतिक वृद्धि कम होती है जिसके फलस्वरूप पैदावार कम मिलती है। साथ ही चिकनी भूमि में फल देर से मिलता है परंतु वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है और पैदावार मध्यम होती है, इसलिए दोमट भूमि का चुनाव अति आवश्यक है। भूमि की तैयारी के लिए अच्छी तरह से 3-4 जुताई करके पाटा लगा देते हैं। खेत की तैयारी के समय पुरानी फसल के अवशेषों को इकट्ठा करके जला दें जिससे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाए। बैंगन की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा, इसकी किस्म, स्थानीय जलवायु और मिट्टी के प्रकार

पर निर्भर करती है। अच्छी फसल के लिए 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिला देते हैं। इसके अलावा तत्वों के रूप में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज की मात्रा इसके अंकुरण प्रतिशत पर निर्भर करती है। एक हेक्टेयर खेत में फसल रोपण के लिए 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज पौधशाला में बुआई कर पौध तैयार की जाती है। बैंगन की फसल वर्ष में 3 बार ली जाती है। इस समय जो फसल ली जाएगी वो शरदकालीन फसल है। बीज की बुआई जून जुलाई में की जाती है और रोपने का समय जो होता है जुलाई अगस्त में होता है। अच्छी प्रकार से तैयार खेत में सिंचाई के साधन के अनुसार आप क्यारियां बना लें। क्यारियों में लंबे फल वाली किस्मों के लिए 70 से 75 सेंटीमीटर और गोल फल वाली किस्मों के लिए 90 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधरोपण करें। रोपण के समय यह ध्यान रखें कि पौधे कीट तथा रोग रहित हों। वर्षा के अनुसार रोपण मेड़ों या समतल क्यारियों में करें। यदि वर्षा न हो रही हो तो रोपण के तुरंत पश्चात हल्की सिंचाई कर दें। रोपण जहां तक हो सके शाम के समय ही करें। रोपाई के अनुसार फुहारे की आवश्यकता से पौधों के थालों में 2 से 3 दिनों तक सुबह और सायंकाल हल्का पानी डालें। इसके बाद हल्की सिंचाई करें ताकि पौधे जमीन में अच्छी तरह पकड़ लें। बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। साधारण गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिन और सर्दी के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करें। यदि पौध मेड़ों पर लगाई गई है तो सिंचाई आधी मेड़ तक करें और सिंचाई अंतराल कम रखें। बैंगन का पौधा काफ़ी वृद्धि करता है, इसलिए फल लगने के बाद वह जमीन पर गिर जाए या टूट न जाए, इससे बचाव के लिए रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने से पानी देने के पश्चात ऊपर की मिट्टी सख्त नहीं हो पाती है और वायु का संचार बना रहता है। गुड़ाई करते समय यह ध्यान रहे कि पौधों की जड़ों के को नुकसान न पहुंचे, अन्यथा पौधे सूख जाएंगे। रोपण के 40 से 50 दिन तक बैंगन की फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधों को विकसित करने का उपयुक्त समय

श्रीनिवास सहाय प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, आइए सुने दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम

0: विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपके लिए प्रस्तुत है चिंतन मनन। चिंतन मनन मनुष्यता, स्वर है नाओमी शांति हेमब्रम का। आइए सुने चिंतन मनन।
2: एक समय की बात है, एक व्यक्ति को चूहे पालने का बड़ा शौक था। उसके पास कई पालतू चूहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन एक घटना घटी। उस व्यक्ति ने अपने सोने की एक अंगूठी टेबल पर रखी और रखकर भूल गया। कुछ समय बाद जब उसे अंगूठी की याद आई, तब वह उसे खोजने लगा। बहुत खोजने पर भी अंगूठी उसे नहीं मिली। अचानक वो देखता है कि चूहे उस अंगूठी से खेल रहे हैं, और तभी एक चूहा उस अंगूठी को निगल गया। चूंकि वहाँ बहुत सारे चूहे थे, सो वह व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि अंगूठी किस चूहे ने निगली। उसने ये पता लगाने के लिए चूहे के शिकारी को बुलाया। शिकारी आया, थोड़ी देर के लिए वो भी सोच में पड़ गया कि इतने सारे चूहों में से वो अंगूठी वाले चूहे को कैसे पकड़ेगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर उस व्यक्ति से बोला कि चूहे खाना किस वक्त खाते हैं। व्यक्ति ने कहा, अब से थोड़ी देर बाद। कुछ समय बाद चूहे खाना खाने आए। शिकारी ने सभी चूहों को गौर से देखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद शिकारी मुस्कुराते हुए बोला, महाशय, आपका चोर पकड़ा गया। व्यक्ति ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं। शिकारी बोला, धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा ऐसी चीजें हैं जिन्हें सभी नहीं संभाल सकते। आपका चोर चूहा भी ऐसा ही है। वो अपने समूह से अलग होकर खाना खा रहा है, जबकि बाकी चूहे मिलकर। कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि हम सभी को अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना ही ज्यादा फैलाव होगा। अगर उस चूहे ने अपना समूह नहीं छोड़ा होता तो शिकारी उसे कभी नहीं पकड़ पाता। लेकिन सिर्फ इस बात के ज्ञान ने कि मेरे पेट में सोने की अंगूठी है, उसमें अहंकार भर दिया और वो अपने को चूहों में श्रेष्ठ मानने लगा, जिसका फल भी उसे मिल गया। इसलिए हम मानवों को चाहिए कि हम चाहे धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा में जितना भी आगे निकल जाएं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले मानव हैं। हम अपने समुदाय को नहीं छोड़ सकते। हमारा अस्तित्व अकेले में नहीं बल्कि समूह में है, समाज में है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपने ज्ञान, प्रतिष्ठा और धन से न सिर्फ दूसरों की सहायता करनी चाहिए, बल्कि उसे सामूहिक रूप से सबके साथ मिल बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए। यही मनुष्यता है। इस पर चिंतन करें।
1: आपने सुना चिंतन मनन मनुष्यता। मनुष्यता वो होती है जब हम लोगों के साथ सद्भावना रखते हैं, लोगों के साथ हम प्रेम से रहते हैं। अगर वो चूहा अपने मंडली से अलग ना हुआ होता, अपने साथियों से अलग ना हुआ होता, तो शिकारी कभी नहीं जान पाता कि वो चूहा ही चोर है। वो चूहा जिसने अंगूठी चुराई थी, ठीक वैसे ही जो मनुष्य चोर होता है, उसके मन में चोर होता है, वो अपने साथियों से अलग रहता है और वो आसानी से पकड़ा जाता है कि ये

अच्छा इंसान नहीं है, इसके अंदर मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहकर मानवता को सीखना चाहिए, और मानवता ही तो सबसे बड़ा धर्म है। चिंतन मनन आपने सुना आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आइए अब आनंद लें देश भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

तलवार कृपाणी, इन सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कुछ है तो वो है हमारी वाणी। अगर हम अपनी वाणी पर संयम रखते हैं और अपनी वाणी में शहद जैसी बात घोल लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी काबू में कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी वाणी में हमें अपनी वाणी में शहद घोलना चाहिए, मिश्री सा मिठास हमें अपनी वाणी में घोलनी चाहिए और हमेशा राधे राधे बोलना चाहिए। किसी से भी पहली बार मिले तो उनसे कहिए राधे राधे, और उनसे उनका हाल समाचार पूछने से पहले उनकी मन की स्थिति जानने की कोशिश कीजिए। कई बार हम लोगों से मिलते हैं और उनके समाचार को बस पूछकर छोड़ देते हैं। असल में हम जानना ही नहीं चाहते कि उनके जीवन में चल क्या रहा है, क्या वो वाकई प्रसन्न हैं। जब आप लोगों की फिक्र करने लगते हैं, अपनी वाणी में मिठास घोल लेते हैं, तो आप पाते हैं कि सब आपसे प्रेम करने लगे हैं और आपकी बातों को समझने लगे हैं, मानने लगे हैं। और सबसे

0: बड़ा धर्म तो यही है कि हम लोगों से प्रेम करें, हम हर जीव से प्रेम करें, और बदले में हमें प्रेम ही मिलता है, क्योंकि कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, कण कण में राधा रानी का निवास है।
1: शिकारी ने सभी चूहों को गौर से देखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद शिकारी

राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, जीवन में अमृत रस घोल। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि केवल नाम बोलने से क्या हो सकता है, नाम में क्या रखा है। वाकई नाम में कुछ नहीं रखा और केवल नाम के जाप से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में श्रद्धा ना हो, जब तक आपका मन पवित्र ना हो, सत्य की राह पर चलने का आपके अंदर संकल्प ना हो, आपके अंदर सत्य की राह पर कठोर राह पर चलने का साहस ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जो भक्ति भाव में लीन रहने का ढोंग करते हैं और वो ढोंग ज़्यादा देर कर नहीं पाते क्योंकि ढोंग ज़्यादा देर चलता भी नहीं। और जो वाकई भक्ति में लीन होते हैं वो कभी ये दिखावा नहीं करते कि वो इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम जपते हैं, उतना दान करते हैं। वो पवित्र मन से सत्य के राह पर चलते हुए नाम जपते हैं और मनुष्य के धर्म को निभाते हैं, दान पुण्य करते हैं। और वो जब नाम जपते हैं तो उस नाम का महत्व होता है। आप वैसे प्राणियों से मिलकर ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वाकई हरि के नाम में लीन हो चुका है, हरि के नाम में खो चुका है। उनके बात में आपको सच्चाई नज़र आएगी, उनके बातों में संकल्प नज़र आएगा, उनके चरित्र में पवित्रता नज़र आएगी। और जो एक बार ईश्वर के नाम में लीन हो जाते हैं वो ऐसे मगन होते हैं कि फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और ईश्वर के दर से वापस आना ही कौन चाहता है। एक बार जो हरि के नाम में लीन हो गया वो फिर वापसी नहीं चाहता। बस हरि के नाम में लीन रहकर मनुष्य धर्म को निभाता रहता है क्योंकि कण कण में हरि हैं, हमारे रग रग में भी हरि हैं। बस हमें पहचानने की देर है, हमें हरि नाम में लीन होने की देर है।

एक बार हरि के नाम की लगन लग जाए, एक बार हरि की लगन लग जाए तो मन में एक अलग सी शांति होती है और एक अलग सी ऊर्जा भी। एक अलग सा विश्वास आ जाता है कि हमें ऐसे नाम की लगन लगी है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे सच्चे नाम की लगन लगी है जिनकी महिमा अपार है। एक ऐसा नाम जो जगदाता है, विश्व विधाता है, जो सुबह है, जो शाम है, जो हमारे हर पल में है। ऐसा नाम जो हमारे हर बिगड़े को बना देंगे अगर हम उनके साथ हों और अगर वो हमारे साथ हों। ऐसा नाम जो हमारी रक्षा करेंगे माता पिता जैसी। ईश्वर के नाम में बात ही कुछ ऐसी निराली है। नाम हरि का हो, नाम राम का हो, नाम शिव का हो, नाम राधा का हो, नाम पार्वती का हो, उनके नाम में ही ऐसी बात है कि एक बार लगन लग जाए तो फिर नहीं छूटती।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जानें स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अपेंडिक्स के बारे में डॉक्टर कुमार रत्नेश से।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस पर, और इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कुमार रत्नेश। आप जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में शल्य चिकित्सक एवं पेट रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे आज हम बातें करेंगे अपेंडिसाइटिस पर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, ये अपेंडिसाइटिस कौन सी बीमारी है?
2: पहली बात है कि अपेंडिसाइटिस जिस बीमारी को हम लोग कहते हैं, वो एक्चुअली छोटा सा एक पतला सा नली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पर मिलती है वहीं पर एक पतली नली जैसी वो स्ट्रक्चर रहती है, जिसमें कि कभी कभी इन्फेक्शन हो जाने से या उसमें सूजन हो जाने से अपेंडिसाइटिस होता है।
1: जी, तो वो नली जो है उसका नाम अपेंडिक्स।
2: अपेंडिक्स है, जी
1: जी जी। और आपने जैसे कहा कि उसमें सूजन हो जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स में सूजन हो जाए तो ऐसे कौन कौन से लक्षण सामने आते हैं या रोगी को महसूस होते हैं जिससे पता चल जाए कि अपेंडिसाइटिस हो गया है?
2: ज्यादातर जो भी मरीज को अपेंडिसाइटिस का शिकायत होता है
1: जी,
2: उसको पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ में काफी जोर का दर्द उभरता है
1: जी,
2: और कभी कभी मरीज को उल्टियां भी होने लगती हैं
1: जी,
2: और उल्टी होने के साथ साथ दर्द बढ़ता चला जाता है और उसको झुकने में, चलने में, बैठने उठने में काफी तकलीफ महसूस होने लगती है। कभी कभी पेशाब में भी तकलीफ होने लगता है, और वैसे मरीज कभी कभी भूख की कमी की भी शिकायत करते हैं, और ये दर्द वहाँ से उठ करके कभी कभी पीछे की ओर भी जाता है, पीठ की तरफ जाता है और नाभि की तरफ भी आता है
1: जी।
2: ऐसा दर्द होने से आपको समझना पड़ेगा कि ये दर्द अपेंडिसाइटिस का भी हो सकता है।
1: जी जी, तो क्या ये दर्द का कोई समय होता है कि इस समय होगा या हमेशा होता है?
2: नहीं, ये अपेंडिक्स में जब भी सूजन आएगा, इन्फेक्शन आएगा, संक्रमण होगा
1: जी,
2: तो अपेंडिसाइटिस की शिकायत दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय में, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षणों के बाद अब इसके कारणों की अगर बातें करें तो क्या कारण हो सकता है अपेंडिक्स में सूजन होने का?
2: ज़्यादातर अपेंडिसाइटिस का शिकायत ब्लड के जो रक्त के संक्रमण होते हैं, रक्त से कीटाणु या विषाणु जाते हैं अपेंडिक्स में
1: जी,
2: वो सूजन कराते हैं, संक्रमण कराते हैं। और चूंकि ये पतली सी नली है तो उसमें कभी कभी एक छोटा सा पत्थर नुमा चीज अटक जाता है जो कि उस नली को बंद कर

0: देता है,
1: जी
0: और बंद हो जाने से अपेंडिसाइटिस की शिकायत हो जाती है, और कभी कभी जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत की जो मिलन होती है जगह पर, वहाँ पर अगर किसी प्रकार का और कोई दूसरा बीमारी हो जाए तो उसमें भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या कोई टेस्ट भी होते हैं जिससे यह निश्चित हो जाए कि अपेंडिसाइटिस ही हुआ है?
0: ज़्यादातर अपेंडिसाइटिस का लक्षण के आधार पर ही उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, पता चल जाता है कि अपेंडिसाइटिस है।
1: जी,
0: और रक्त के जांच से, पेशाब के जांच से, और कभी कभी अल्ट्रासाउंड की मदद से भी अपेंडिसाइटिस का पता लगाया जा सकता है।
1: जी, अब डॉक्टर साहब इसके उपचार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना अपेंडिसाइटिस के लक्षण, कारण एवं उपचार। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर कुमार रत्नेश, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब रामचरित मानस गान का आनंद लें महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति की मिलीजुली आवाज़ों में।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

रामचरितमानस गान आपने सुना महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

रोजाना की तरह प्रातः 7 बजे सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जान पाएंगे मौसम सूचना, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां एवं अन्य बातें। साथ ही आनंद लेंगे सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का और सुनिए अंग्रेजी वार्ता। आज फिल्मी गीतों का प्रसारण समय है प्रातः 9:06, 10 बजे, 11 बजे, 11:30, 2:30, शाम 5:30, रात 8 बजे और रात 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी होगा। सुगम संगीत का प्रसारण समय है प्रातः 9:30, कलाकार होंगी डीजी प्रियदर्शनी, शाम 7:52 पर कलाकार राकेश कुमार। लोकगीतों का आनंद लीजिए प्रातः 10:30 पर चंद्रशेखर मिश्र के स्वर में, 1 बजे कलाकार होंगे जयनारायण तांती। 7:10 पर लोकगीत होगा इंद्राणी सिन्हा के स्वर में। दोपहर 2 बजे बहने अपना कार्यक्रम नारी लोक सुनती हैं। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 1:30 पर आप सुन पाएंगे घर आंगन कार्यक्रम। प्रस्तुत होगा बंगला गान कार्यक्रम दोपहर के 3 बजे, 3:20 पर आप सुन पाएंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे युवाओं का विशेष कार्यक्रम युववाणी होता है। शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम होगा। साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी होता है आज यानी कि सोमवार को रात 8:15 पर। सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कलाकार पंडित निखिल बनर्जी को रात 10 बजे, प्रस्तुत होगा राग चंद्रकौस।

आपने सुना कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आइए अब सुने दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने, अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये वादा करती हूँ कि कार्यक्रम में आगे बहुत सी बातें होने वाली है, बहुत सी जानकारियाँ और जानकारियों की पोटली में लिपटी होने वाली है मनोरंजन। बस आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक कर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, जानकारी मनोरंजन का पिटारा खुलता जाएगा। वैसे उम्मीद है कि आपने अभी तक अपने दिन की शुरुआत कर ही ली होगी, कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे 7:02 हो चुके हैं। और अगर हम दिन की बात करें तो आज दिन है सोमवार का, तो आपने अपने दिन की शुरुआत तो की ही होगी, साथ ही हफ्ते की भी शुरुआत हो चुकी है। ऑफिस जाने वाले, ट्यूशन जाने वाले सभी लोग अपने अपने इस हफ्ते की शुरुआत में लग चुके होंगे। बहुत सी बातें होती है और जो पिछला हफ्ता था उस हफ्ते में आपने क्या कुछ खास किया, क्या कुछ काम बाकी रह गया, इस हफ्ते में सारे वो काम करने होंगे। तो वैसे भी सोमवार का दिन काफ़ी बिजी रहता है और इस बिजी वाले दिन में थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा वक्त हमारे साथ बिताइए और बहुत सी बातें, बहुत सा मनोरंजन और अपना दिन हमारे साथ शुरू कीजिए। और साथ ही कहते हैं कि अपने दिन की जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें कल जो हमने किया उस बारे में एक बार सोचना चाहिए। कल जो बीत गई सो बाद गई वाली बात से अगर हम चलते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बुरी होती जाती है, क्योंकि जो बीत गया उससे हमें सीख भी लेनी चाहिए। हाँ, उसे पीछे छोड़ देना चाहिए पर उसकी सीख को लेकर आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो आज आप अभी, या तो फिर हो सकता है कि आपको रात को वक्त मिले, तो रात को बैठकर सोचिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको बीते वक्त से याद रखनी है और क्या ऐसी चीज़ है जो बीते वक्त में आपको भूल जानी है पर उस बात से आपको सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो बातें याद रखने वाली होती है वाकई वो अच्छी बात होती है, और जो बात भूल जाने लायक होती है वो बुरी बात होती है। और बुरी बातों से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सबक, हमें मिलती है सीख। तो आज बैठिए और सोचिए कि क्या भूलूं, क्या याद करूं। एक चार्ट बनाइए और देखिए आपको अपने अब तक के जीवन का बहुत हद तक एक सार समझ आएगा।

क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। ये गीत आप सुन रहे हैं हरिवंश राय बच्चन का लिखा, आवाज है विजय कुमार दास की, और बिल्कुल आपने ठीक समझा है, सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा। हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल ये सुनिए सुगम संगीत विजय कुमार दास के स्वर में।

0: फिलहाल आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि मौसम ऐसा है कि जब भी आप बाहर जाएं पानी की बोतल साथ में ज़रूर रखें और साथ में एक छाता भी ज़रूर रखें और कोशिश करें कि दोपहर को बाहर बिल्कुल ना निकलें। और वैसे आज मौसम का हाल मैं अगर आपको बताऊं तो आज अधिकतम तापमान जो रहने वाला है वो रहने वाला है 36.8 डिग्री सेल्सियस और वहीं न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और पूरे दिन आसमान में पूरी धूप चमकने वाली है और बहुत तेज़ धूप निकलने वाली है, तो बिल्कुल अपने सेहत का ध्यान रखें। और शाम के बाद हो सकता है थोड़े बहुत बादल नज़र आए, पर आज बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, या कहें कि ना के बराबर है, अनुमान है कि आज बारिश नहीं होगी। और वहीं अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। और अनुमान है कि हवा 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और ये हवा दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। तो ये है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है, हो सकती है पर बहुत कम है। और अब हम कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अंतराल के उस पार हम आपको यहीं मिलेंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम जानते हैं आज कौन सी ट्रेन लेट लतीफ़ है और कौन सी ट्रेन बिल्कुल सही समय पर है। ट्रेन संख्या 15553 यानी कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस बिल्कुल अपने निर्धारित समय 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। और अगर हम बात करें ट्रेन संख्या 13016 यानी कि हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस की, तो हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस अपने तय समय पर भागलपुर आ जाएगी यानी कि 7:45 पर भागलपुर आएगी। और आपको बता दें भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। और ट्रेन संख्या 12368 यानी कि आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय पर यानी कि 8:15 पर भागलपुर पहुंच जाएगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से चलते हुए 8:41 पर भागलपुर आएगी। ट्रेन संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर बिल्कुल अपने तय समय पर भागलपुर आएगी। ट्रेन संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस अपने तय समय से अपने तय समय पर भागलपुर पहुंच जाएगी यानी कि 9 बजे। 1-2-2-5-3 यानी कि यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस 51 मिनट की देरी से चल रही है, ये अब 10:11 पर भागलपुर आएगी। ट्रेन संख्या 6-3-4-3-1 साहिबगंज जमालपुर मेमू 9:15 पर, जो कि इसका राइट टाइम है, बिल्कुल अपने राइट टाइम पर भागलपुर आएगी। 1-3-4-0-9 यानी कि मालदा क्योल इंटरसिटी अपने निर्धारित समय 9:35 पर भागलपुर आएगी। 1-3-4-0-1-3-2-4-1 जी हाँ, ट्रेन संख्या 1-3-2-4-1 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 10:15 पर अपने बिल्कुल सही समय पर भागलपुर पहुंचेगी। 1-2-3-6-7 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो ये है ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे एक अंग्रेजी वार्ता, एक इंग्लिश टॉक, और इंग्लिश टॉक के उस पार बहुत सी बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के उस पार मिलते हैं।
2: सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा था कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
2: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
0: ठीक अपने वादे के अनुसार इस बार हम हैं एक छोटे से अंतराल के इस पार लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में हम आगे बढ़ते हुए सुनेंगे एक अंग्रेजी वार्ता। वार्ता का विषय है AI इन एजुकेशन, और वार्ताकार हैं यानी कि टॉकर हैं स्वेता सिंह कोमल।
4: दिस इज आकाशवाणी। इन आवर इंग्लिश टॉक प्रोग्राम नाउ यू विल बी लिसनिंग टू ए टॉक एंटाइटल्ड AI इन एजुकेशन, presented by Dr. Shweta Singh Komal.
5: Today we will discuss artificial intelligence in education. Artificial intelligence in education is use of AI tools to foster learning. Artificial intelligence uses computer science and data to enable problem solving through machines. It also considers influences and ramification of AI in education system and also its future possibilities. It includes innovation in the education sector to create a suitable learning environment. Though the use of AI is inevitable in the field of education, there are certain concerns which include data-driven decision-making, AI ethics, data privacy, and AI literacy. There are concerns about over-reliance too, which may turn problematic over the time. There have been efforts to integrate AI in education since a very long. It looks like incorporation of new technologies and efforts are as old as the history of AI itself. From quite early, researchers and educators started to develop computer-based instruction system. Intelligent tutorial system were developed and adopted for classroom instruction. Likewise, Artificial Intelligence in Education Society was founded in the year 1993. During 2020s, large language models, LLM, have been the focus of educators. AI in education actually applies theories from machine learning and future and logical AI. In fact, natural language processing models of AI can actually help in learning, and with advancement of AI, such useful models will become better with time. Artificial intelligence has the potential to address some of the biggest challenges of our time. In our time, as AI is growing at a fast pace, it has improved and has been scaling up. It is inevitable in all the fields of knowledge and research, including education. With the launch of ChatGPT in 2022, AI as technology has been available to almost all Android users around the world. ChatGPT is a generative AI tool which uses natural language processing, meaning they can interpret and react to natural language, which makes it user-friendly. Generative AI, as a developing technology, can be used to facilitate education. These can be used to automate tasks, create content, plan programs, manage data and tasks. It can also be used to cater to personalized requirements and problem solving. It can provide instant feedback and grading and can give data insights to teachers. Nevertheless, it raises a concern for privacy and equity. AI tools like chatbots, adaptive platforms and virtual or augmented reality may enhance engagement and support students, saving the time of both teachers and students. That can pave the way for more effective and accessible education for all. AI may enable personalized learning and adapt to individuals' need of pace, content and difficulty. It can handle grading, scheduling and administrative works and provide required help. AI chatbots and assistants offer 24/7 support, answer and study help. Virtual or augmented reality can create engaging lessons and fosters immersive experiences in learning. It is useful for performance analysis and provides information about students' progress. This way, it enables early intervention and informed decisions. It may enhance accessibility and support students in case of speech disabilities. Through tools like text-to-speech, AI is actually breaking down the education barriers. These tools support students with different learning requirements. In fact, AI is setting the stage for a future where learning can be more personalized and effective. AI-enabled platforms like Dreambox and Smart Sparrow analyze students' response in real time. Tools like Gradescope provide consistent and objective grading of assignments. Programs may use adaptive AI to engage the learners. Speech recognition website transcribes spoken words into text for hearing impaired. It fosters a more accessible platform, better managed and well executed. Basically, AI is about adaptive learning, assistive technology, data learning, analytical tasks, and automation. It also requires smart content creation and proctoring. AI tools like Duolingo use adaptive algorithms to personalize language learning experiences. It enhances language acquisition. In fact, AI enhances immersive learning too. It enhances these learning experiences through simulation. AI has potential to break the barriers between two disciplines and promote multidisciplinary learning. This paves the way for skill enhancement. People now can learn data analytics and coding without any background in computational technology. It is possible with the help of integration of AI, where AI facilitates the learning through filling the gap of knowledge. With the thoughtful use of AI, great scaling of knowledge and skill is possible. Tools which can beat physical barrier in education are of immense help and value. Tools like Dizolve can detect dyslexia and other learning disabilities early on by analyzing the patterns. Likewise, it can be used in innumerable ways to enhance learning, removing the barrier, foster effective planning, and many more. Moreover, with language model and big data availability, plagiarism detections are easier now. This promotes academic sanctity. AI assists academic research by analyzing large data sets and giving insights. To incorporate large data and to manage the same, AI can turn out to be a game changer. AI has potential to overcome all the barriers of education, be it of place, price, or performance. It can build a universal, efficient interface of quality education all through and can fill the gap of accessibility and availability. A universal interface of affordable quality education can be created with the thoughtful use of AI. Overall, it is hoped that AI will actually help educators make continued progress in addressing physical and cognitive gap and provide quality education to all. Thoughtful, ethical use of AI can maximize its benefits. With its development, AI will certainly transform education by creating an interface of socio-technological advancement coupled with educational aspirations. AI will transform computing, internet, and social media by touching all aspects of the society, and certainly it is doing the same now. AI-facilitated learning, also called adaptive learning, has the potential to provide customized learning. It uses computer algorithm to solve a problem or to fit to a requirement. Starting from 2020, higher education institutions have started to have guidelines and policies to account for artificial intelligence. Many education institutions and forums, including UNESCO, have published reports on specific artificial intelligence uses in education. In 2024, UNESCO released updated report on generative AI use in education. These are valid concerns to ensure teachers' training, ethical use, and data protection for responsible integration of AI in education. Though it has been integrated well, and reports suggest that the use of AI in education, like grading, research, or curricular design, have increased, there may be concerns about reliability, bias, and unpreparedness. These all suggest a proper integration of AI through teachers' training. However, there are concerns that normalization of AI may hamper academic creativity, critical thinking, and problem-solving abilities at large. Over-reliance can foster inaccuracies, and these are some valid concerns regarding AI, because AI is now in wide use in almost all the realm of society. There are concerns about bias that may process through AI. Large language models have been trained over language itself, which may perpetuate bias of people or community. Intellectual property rights are also important, and these are valid concerns as we require large data to train AI. Some of these data could be private, proprietary as well. AI is revolutionizing education by augmenting human intelligence, fostering deeper engagement, and streamlining processes with a focus on creating inclusive and effective learning environment for all.
4: You are listening to an English talk entitled AI in Education, presented by Dr. Shweta Singh Komal. Please stand by for our next program.
0: आप सुन रहे थे इंग्लिश टॉक. विषय था AI in Education और वार्ताकार थी डॉक्टर श्वेता सिंह कोमल. यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है. आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला. मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा. आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आगे बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में. लेकिन उससे पहले आपको मैं अभी का हाल बता दूं. अभी अगर बात करें तो आज दिन है सोमवार का, तारीख है 15 जून सन 2026. जी हाँ, 15 जून. जून भी आधी बीत चुकी है. और अगर हम समय की बात करें तो समय हो चुका है 7:32 और बहुत जल्दी ही 7:33 होने वाले हैं. बस हमारी एक दो बात ख़त्म होगी नहीं कि 7:33 हो जाएंगे. ये लीजिए 7:33 हो गए और हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. अभी के बात तो हमने कर ली, अब हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में झांकते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ था. आज ही के दिन 1908 में, आज के दिन यानी कि 15 जून को 1908 में कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी. और 1982 में फॉकलैंड में अर्जेंटीना की सेनाओं का ब्रिटिश सेना के समक्ष समर्पण हुआ था. 1994 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वायुमंडल में उत्सर्जन को कम कर अम्ल वर्षा रोकने के लिए 26 यूरोपीय देशों और कनाडा के बीच हुए समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया था और 1994 में ही इजराइल और वैक्टिन सिटी में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 1997 में 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में D8 नामक संगठन का गठन किया गया था। 1999 में लॉकरबी पैन एम विमान दुर्घटना के लिए लीबिया पर मुकदमा चलाए जाने की अमेरिकी अनुमति मिल गई थी। साल 2001 में शंघाई 5 शिखर सम्मेलन बीजिंग में संपन्न हुई थी। शंघाई 5 अब शंघाई सहयोग संगठन बना। भारत और पाकिस्तान दोनों को सदस्यता देने का निर्णय लिया गया था आज ही के दिन 2001 में। साल 2002 में कनाडा के हेलीफेक्स नोवा स्टॉकिया में G8 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक शुरू हुई थी। साल 2004 में ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को राष्ट्रपति बुश की स्वीकृति मिली थी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा माय लाइफ बेस्ट सेलर बन गई थी। साल 2005 में जमैका के आसफा पावेल का एथेंस में 8.77 सेकंड का समय लेकर 100 मीटर फर्राटा दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया था। जमैका के आसफा पावेल ने साल 2006 में भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था और साल 2008 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर

बड़े सितारे को अंतिम स्थिति में देखी थी। और अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन निधन हो गया था, जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके काम, उनकी बातें आज भी हमारे बीच हैं। साल 2017 में निधन हो गया था प्रफुल्ल चंद नटवर लाल भगवती का। नटवर लाल भगवती भारत के भूतपूर्व 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1878 में निधन हो गया था शिवदयाल साहब का। शिवदयाल साहब दीक्षित हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज है जन्मदिन। 1995 में जन्म हुआ था मनिका बत्रा का। मनिका बत्रा राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय टेबल टेनिस सितारों में से एक है। 1950 में जन्म हुआ लक्ष्मी मित्तल का। लक्ष्मी मित्तल भारतीय उद्योगपति हैं। 1937 में जन्म हुआ था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले एक समाज सेवक हैं। और इनके बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होगी, बहुत सी बातें आप जानते हैं। आज ही के दिन 1929 में जन्म हुआ था सुरैया का। सुरैया एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका हैं। 1932 में जिया फरीउद्दीन डागर का जन्म हुआ था। भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरीउद्दीन डागर। 1917 में जन्म हुआ था सज्जाद हुसैन का। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। श्रीमन नारायण अग्रवाल का जन्म हुआ था 1912 में। अग्रवाल प्रसिद्ध संगीतकार साहित्यकार थे। और के हिबार का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1911 में। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक तारकनाथ दास का जन्म हुआ था 1884 में। देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे, उनका जन्म हुआ था 1899 में। 1899 में ही जन्म हुआ था राजेंद्र सिंह जी जडेजा का। राजेंद्र सिंह जी जडेजा भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। और अभी मैंने आपको बताया कि सुरैया का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1929 में। अगर हम सुरैया की बात करें तो एक ऐसी मशहूर अभिनेत्री और गायिका थी कि जिन्होंने उनकी अदाकारी देखी या फिर जिन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, वो उनके दीवाने हो गए। बहुत सारे लोगों को सुरैया के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वो 40 से 50 दशक के दौरान उन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें सुरैया की, तो सुरैया भारतीय सिनेमा के 1940 और 1950 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री और गायिका थी। अपनी बेहतरीन गायकी और दिलकश अदाकारी के लिए उन्हें मल्लिका ए तरन्नुम भी कहा जाता था। और उनके जीवन का एक किस्सा लोग आज भी याद करते हैं। जब भी बॉलीवुड के हम प्रेम कहानियों की बात करते हैं तो देवानंद और मल्लिका ए तरन्नुम यानी कि सुरैया के प्रेम कहानी को याद किया जाता है। और उस प्रेम कहानी का त्रासद अंत आज भी बॉलीवुड के इतिहास का एक मशहूर हिस्सा है। अगर हम उनके जीवन के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। जन्म हुआ था 15 जून 1929 में लाहौर पंजाब में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। बचपन में जब वो बस एक साल की थी ना, तभी वो मुंबई आ गई थी अपने परिवार के साथ। और उन्हें बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। तो 1941 में फिल्म आई थी ताजमहल, उसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपनी आवाज़ दी थी। बाद में उन्होंने अपना फिल्मी करियर भी शुरू किया गायिका और अभिनेत्री के तौर पर। सुरैया उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थी जो फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ अपने गाने खुद भी गाया करती थी। और सुरैया को सफलता मिली थी 1948 में आई फिल्म विद्या के साथ। और इस फिल्म ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, जैसे कि चार दिन की चांदनी, हम थे तुम्हारे, तुम थे हमारे, दिल धड़के आँख मोरी, चले दिल की दुनिया, और भी बहुत सारे गाने उन्होंने गाए। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करें तो मिर्ज़ा गालिब जो 1954 में आई थी, प्यार की जीत 1948 में, बड़ी बहन 1949 में, दास्तान, दर्द, दिल लगी, जैसे ढेर सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया। और उनकी अंतिम फिल्म आई थी 1963 में रुस्तम सोहराब। और उसके बाद सुरैया का
स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। और अगर उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो उनकी मुलाकात देवानंद से पहली बार फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। वही फिल्म विद्या जिसने सुरैया के जीवन को एक नई ऊंचाई पर, उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर तो पहुंचाया ही, साथ ही उनके जीवन को एक अलग मोड़ पर ले गई। एक बार एक बोट यानी कि नाव पलटने के दौरान देवानंद ने सुरैया की जान बचाई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और दोनों में प्यार हो गया। लेकिन सुरैया के परिवार, खासकर उनकी नानी, इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थी, क्योंकि देव आनंद दूसरे धर्म के थे और दोनों अलग अलग पहचान रखते थे। दोनों अलग तो हो गए अपने परिवार वालों के खातिर, लेकिन नानी के दबाव के कारण सुरैया ने देवानंद से शादी नहीं की। लेकिन इसके बाद सुरैया ताउम्र कुंवारी रही, उन्होंने शादी नहीं की। और 1996 में भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 74 वर्ष की उम्र में 31 जनवरी सन 2004 को उनका निधन हो गया। और उनकी फिल्में, उनके गाने आज भी हमारे बीच हैं। ये सुरैया के ही आवाज़ में एक गीत सुनते हैं, और ये गीत है दिल लगी फिल्म का, सुरैया की आवाज़ में, संगीत है नौशाद का, और बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: शानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी, या तो हमने की इतिहास की बातें हमने याद की, अब वर्तमान में क्या कुछ घटित हो रहा है। आज के समय में वर्तमान में काफी कुछ घटित हो रहा है। आइए जानते हैं कि समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या कहती है वर्तमान के हालात के बारे में, देश और विदेश के हालात के बारे में, साथ ही अपने शहर के हालात के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। स्कूलों में खास प्रयोग, केरल के सरकारी स्कूल में चल रहा दो पीढ़ियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट। पश्चिम बंगाल में किताबों के साथ मछली पकड़ना, शहद संग्रह और खेती सिखाते हैं। सुंदरबन की अनोखी पाठशाला, यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं नदी और खेत में होती है पढ़ाई, इससे ड्रॉप आउट घटा। दादा दादी क्लास में सुना रहे गाने कहानियां, खिला रहे खेल, बच्चों की मोबाइल लत छूटी, रचनात्मक हुए। महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत 64 रन से जीता पाक पर सबसे बड़ी जीत। इस बार बेटियों ने हराया। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर में केवल 10 रन और 5 विकेट झटके। 10 साल से पाक के सामने हम अजय रहे हैं। पाटलिपुत्र जंक्शन पर बवाल, आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज आईजी और रेल एसपी घायल। सीमांचल के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चली, 5,000 अभ्यर्थी पहुंचे थे स्टेशन, 6 घंटे बवाल। 3,000 की परीक्षा छूटी, 8 राउंड फायरिंग की गई कार्यवाही। फर्जीवाड़ा, सहरसा से कोचिंग संचालक समेत 15 गिरफ्तार। भारत फ्रांस बना सकते हैं एआई का ओपन सोर्स मॉडल। भारत इनोवेट्स 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का साझा विजन। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने पद छोड़ने का ऐलान किया। एसडी संजय का नाम नए महाधिवक्ता के लिए चर्चा में बना हुआ है। लापरवाही, 2 करोड़ मासिक खर्च के बावजूद सड़क पर गिर रहा कचरा, राहगीर व बाइक सवार परेशान, बिना ढके दौड़ रही कूड़ा गाड़ी, निगम बेखबर। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में भागलपुर पुलिस ने परीक्षा से पहले बरारी से 2 को पकड़ा। भागलपुर समेत खगड़िया, कैमूर और सहरसा से भी आरोपी धराए। दावा बनाम हकीकत, गैस किल्लत बरकरार, नया कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, कागजों पर पर्याप्त स्टॉक, जमीन पर 4 से 5 दिन का बैकलॉग। शिक्षा विभाग 17 जून को कैबिनेट में नई ट्रांसफर नीति पेश करेगा, मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग 14 दिनों में पूरी होगी। 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ाएंगे शिक्षक। 20 से 25 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। 1 विषय में 1 शिक्षक, सीट नहीं तो दूसरे स्कूल में जाएंगे। किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी दी जाएगी, खरीफ महाअभियान शुरू, जिलों में जागरूकता वाहन रवाना। स्पेस एक्स, ओपन एआई, एंथ्रोपिक पब्लिक हो रही। मस्क का इशू, फेसबुक के 17 आईपीओ की बराबरी कर रहा। ऐतिहासिक 3 कंपनियां, 20 अरबपति, 16,000 करोड़पति। आईपीओ के दम पर दुनिया के पहले ट्रिलियनर का उदय। इलॉन मस्क पहले से दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। स्पेस एक्स की लिस्टिंग के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं, यानी उनकी कुल संपत्ति 104 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। निफ्टी में रिकवरी, बैंक निफ्टी में उछाल ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा। ब्रेकआउट से सेंसेक्स निफ्टी जोश में, निफ्टी 20 दिन के औसत से ऊपर। 5 एसएमई आईपीओ जुटाएंगे 253 करोड़ रुपए। टेलीकॉम डिफेंस शेयरों पर भी दाव, कंज्यूमर बैंक शेयरों में फंड निवेश बढ़ा। मई महीने में टॉप 3 फंड हाउस की रणनीति। क्वांटम हैकिंग की जद में 70 लाख बिटकॉइन, ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में जियो टॉप 20 में पहुंची। फीफा मैच डे के तीसरे दिन में मोरक्को ने 5 बार के चैंपियन को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। अन्य मुकाबलों में जर्मनी 12 साल बाद जीता पहला मैच। कतर को पहली बार अंक मिला। ब्राजील 92 साल भी ओपनिंग मैच में अजय रहा।
विनीसियस जूनियर ने अपने 50वें मैच में दागा बराबरी का गोल। 16 साल में रैंक का सबसे बड़ा अंतर, 4 बार का विजेता जर्मनी 7-1 से जीता। तुर्की का 72% पजेशन पर 0.0

दो से हार 24 साल बाद उतरी थी टीम। स्कॉटलैंड की 1990 के बाद पहली जीत, मैच में रिकॉर्ड 44 फाउल हुए, 1-1 से ड्रॉ, स्विट्जरलैंड पेनल्टी पर गोल करने वाला 51वां देश बना। 7 वर्ल्ड कप में कभी ओपनिंग मैच नहीं जीता मोरक्को। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 170 रन बनाकर पाक को 106 पर समेटा। मजबूत शुरुआत, 31 रन के भीतर 7 विकेट लेकर जीती टीम इंडिया। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कोरिया को 5-1 से हराया। ओलंपिक विजेता को हराकर जीते गोल्ड, पूरे इवेंट में भारतीय जोड़ी ने सिर्फ 5 सेट अंक गंवाए। कामयाबी फोर्स ने अमेरिका के 250 सफल प्रवासियों की सूची जारी की। इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई समेत 30 भारतवंशी शामिल। विनोद खोसला इंटेल की कहानी पर उद्यमी बने। जय ने गांव से निकलकर कंपनी खड़ी की। दोस्तों, ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब वक्त का हाल कह रहा है कि हमें आपसे लेनी चाहिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने आसपास का रखें विशेष ध्यान। और अपने आसपास आप जहां भी थोड़ा भी वक्त बिताते हैं, वहां आप साफ सफाई ज़रूर रखें। इससे आप, आपके परिवार और आपका समाज स्वस्थ तो होगा ही, साथ ही हमारे समाज की तस्वीर भी बेहतर होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रखिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुने कुछ जरूरी संदेश एवं सूचनाएं।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: उमंग
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा का। खबरनामा के थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजगस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में

0: अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
2: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
4: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
3: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
5: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
3: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिंदुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
8: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
7: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI Impact Summit in February this year. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, and automobile and railway manufacturing. Our correspondent reports that upon his arrival in Bratislava, Mr. Modi was given a warm welcome and accorded a traditional Slovak hospitality.
9: Prime Minister Narendra Modi was received by Slovak Foreign Minister Juraj Blaner upon his arrival in Bratislava last night. Members of the Indian diaspora gathered in Bratislava welcomed him with slogans upon his arrival. Slovak musicians of the Lutnica ensemble performed Vande Mataram on the Prime Minister's arrival. Sri Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome today in Bratislava. Vidhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
7: The 52nd G7 summit will begin at Avignon in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. His participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. India is important for the G7 as a premier economic powerhouse, a diplomatic bridge to the developing world, and a strategic anchor in the Indo-Pacific. A report from our correspondent.
10: As the summit gets underway, reducing global imbalances has emerged as the central priority of the host nation's G7 presidency. According to the official summit framework, leaders will deliberate on geopolitical challenges, international peace and security, balanced economic growth and key global crises during the closed-door sessions beginning today. Prime Minister Narendra Modi will participate in the outreach sessions tomorrow. India's participation in the summit will provide an opportunity to highlight the priorities and concerns of the Global South while contributing to deliberations on key global issues. Ankit Kumar, Akashvani News, Avignon, France.
7: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates, round the

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हममनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 अरब कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर ईवान में शुरू होगी। वज़ीर आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एडबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस माहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस माहदे में अमेरिका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पेरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वो स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेगिनी और वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वजीर आजम के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलूर्ती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर ईवान में शुरू हो रही है। तीन रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदु किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकत दार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलावी अमन और सलामती, बाहमी इकतसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जुनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाकई नोएडा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
2: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। NTA ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को यह भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खुसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदामात पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है. मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ. मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ.
1: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है. ओमी शारा नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है. रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया है. भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई है. आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है.
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं. सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं. ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है. ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले.
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है. 19वां मुंबई बैनल अक्वामी फिल्म फेस्टिवल

0: जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज गया जिले के खिजरसराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज पटना के मीठापुर में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ और भोजपुर के वाणासुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का होगा शिलान्यास। प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का अधिकार और बंदोबस्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आज से बसेरा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। अब समाचार विस्तार से। गया जिले के खिजरसराय में आज प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी संयुक्त रूप से इस केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी मौजूद रहेंगे। यह प्रौद्योगिकी केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र के MSME परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रौद्योगिकी केंद्र से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 20 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले इस केंद्र में उत्पादन ब्लॉक, प्रशिक्षण ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक समेत कई खंड बनाए जाएंगे। यह केंद्र गया जी, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और मुंगेर जिलों में MSME के लिए कार्य करेगा। यह केंद्र सामान्य और भारी अभियांत्रिक तथा वस्त्र परीक्षण के प्रमुख क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यालय में प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में रफ्तार मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री आज ही भोजपुर जिले के वाणासुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क में प्रदेश की नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मत्स्य उत्पाद और उत्पादकता में गुणात्मक बढ़ोतरी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2.5 लाख घरों की छत पर 20 नवंबर तक सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के घर की छत पर लगे सोलर पैनल से 125 यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा, राज्य सरकार उनसे बिजली खरीदकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आज से अभियान बसेरा के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। 21 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन परिवारों तक वास भूमि का अधिकार पहुंचाना और भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इसके तहत सुयोग्य श्रेणी के उन वंचित सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही सरकारी भूमि जैसे गैर मजरुआ खास और आम भूमि पर बसे पात्र परिवारों की जांच कर उन्हें भी योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार ने भूमि विवादों के तेजी से निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायाधिकरण में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश में पर्यटन के प्रसार के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों तक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसके तहत माम उंडेश्वरी, करकटगढ़ जलप्रपात और राजगीर के पर्यटन स्थलों के लिए अनुदानित दर हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही वाल्मीकि नगर के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए वायु सेवा भी जल्द शुरू होगी। प्रदेश के सभी प्रखंडों में कल से 3 दिनों तक प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इस शिविर में आयुष्मान भारत, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, दिव्यांग कल्याण योजना समेत केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। आम लोगों की मदद के लिए नोडल अधिकारी के साथ कर्मचारी और स्वयंसेवक भी तैनात। नगर निकाय स्तर पर होने वाले सहयोग शिविर नियमित रूप से जारी रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नीट यूजी समेत विभिन्न परीक्षाओं के फर्जी प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विभिन्न परीक्षाओं में फर्जी प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरोह के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि यह गिरोह सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से प्रश्न पत्र के नाम पर ठगी भी करता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे

0: बच्चे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में मानसून अभी मुजफ्फरपुर के आसपास रुका हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में इसके पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय और नवादा समेत आसपास के जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।
2: दिनांक 15 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सासाराम में सबसे अधिक 76.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं किशनगंज के गलगलिया में 75.8 और रोहतास के डेहरी में 67.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश की सभी नदियों से बालू खनन पर आज से रोक लगा दी गई है। यह रोक 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीणा ने बताया कि मानसून के चलते सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने और थाना स्तर पर इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने बताया कि बंदी की अवधि में बालू की मांग को पूरा करने के लिए करीब 30 लाख CFT बालू का भंडारण किया गया है। लोक भवन ने प्रदेश में नव सृजित 211 नए डिग्री कॉलेजों में पद स्थापित प्राचार्य और बर्सर के तबादले पर रोक लगा दी है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजे पत्र में अगले आदेश तक स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से नव सृजित महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण के किसी भी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की थीम है पवन ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप 1 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 171 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ऑल आउट हो गई। 5 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मद निषेध सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों के उपद्रव पर लिखा है, पाटलिपुत्र जंक्शन पर परीक्षार्थियों का बवाल, 500 अज्ञात पर केस दर्ज, 6 को हिरासत में लिया। इसी खबर को तरजीह देते हुए आज अखबार लिखता है, पटना के 554 केंद्रों पर ली गई सिपाही भर्ती।

0: सागर की सुर्खी है, 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा परियोजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज गया जिले के खिजरसराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज पटना के मीठापुर में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ और भोजपुर के वाणासुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का होगा शिलान्यास। प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का अधिकार और बंदोबस्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आज से बसेरा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: मीडियम वेव 487.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी का पटना के
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद ले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुने फिल्म कल हो ना कभी अलविदा ना कहना का ये गीत। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना, आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, संगीत तैयार किया है शंकर एहसान लॉय ने, अल्फाज हैं जावेद अख्तर के।

श्रोताओं, अगला गाना सुनिए, समीर का लिखा, अलका याग्निक और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में। संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म है जोश।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
4: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं आइए अब सुने शान और श्रेया घोषाल को जय हो फिल्म के इस गीत के लिए। गीतकार हैं समीर अंजान, संगीतकार साजिद वाजिद।

अगला गाना हमने लिया है आशिकी फिल्म से। आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ने, समीर अंजान के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं डीजी प्रियदर्शनी। आइए इनकी आवाज में सुने कबीरदास का लिखा ये भजन।

0: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं डीजी प्रियदर्शनी। श्रोताओं आइए इनकी आवाज में सुने जयशंकर प्रसाद की ये रचना।

सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार थे डीजी प्रियदर्शनी। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बज चुके हैं। यह समय होता है पुरानी फिल्मों पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का पहला गाना सुने शारदा की आवाज में, गुमनाम फिल्म से। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, अल्फाज हैं इंदिवर के। हैसियत फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।
1: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
2: क्या चाहिए?
1: अरे भाई देर हो गई।
2: तो मैं क्या करूं?
1: कॉफी, कॉफी चाहिए।
2: कॉफी, कॉफी और मैं।

आइए अब सुने हम दोनों फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी के स्वर में। साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत तैयार किया है जयदेव ने।

हाथी मेरे साथी फिल्म के इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, बोल हैं आनंद बख्शी के संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में इतना ही। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीत में आज कलाकार हैं नूतन कुमारी।

0: लोकगीत में कलाकार थी नूतन कुमारी। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत बहुत बड़ी सफलता।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म धड़क 2 के इस गीत से जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल ने। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने, धुन बनाई है जावेद मोहसिन ने।

दे दे प्यार दे टू। अभी आपने सुना है इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे कुमार ने, धुन बनाई थी पायल देव और आदित्य देव ने। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए फिल्म सैयारा से। गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल, गीत और संगीत द रिश का है।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, फिल्म धुरंधर से।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म धुरंधर का गीत अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने।

अभी आपने सुना फिल्म रेड टू का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर, पूर्णा अलाहाबादी और नुसरत फतेह अली खान ने। संगीत दिया था रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान ने। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, फिल्म लापता लेडीज से। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, धुन बनाई है राम संपत ने और आवाज़ श्रेया घोषाल की।

श्रेया घोषाल के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नई फिल्मों से संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत, शीर्षक है गुलदस्ता।

महकते फूलों की खुशबू और सुरों की मधुर सरगम लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने प्रिय कार्यक्रम गुलदस्ता में। फिल्म संगीत की उस रंग बिरंगी दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर गीत एक एहसास है, हर धुन एक कहानी है और हर नगमा दिल के किसी न किसी कोने को छू जाता है। कभी ये गीत प्यार की मीठी फुहार बनकर बरसते हैं तो कभी यादों के झरोखे से झांकते हुए हमें बीते हुए लम्हों की सैर करा जाते हैं। तो आइए कुछ पल के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ को पीछे छोड़ दें और खो जाएं हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों की इस खूबसूरत बगिया में, जहां सुर हैं, संगीत हैं, भावनाएं हैं और दिलों को जोड़ने वाली अनगिनत यादें भी हैं। गुलदस्ता कार्यक्रम सभी सुनने वाले श्रोताओं को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है वो संगीत जिसमें एहसास और यादों का मनमोहक सफर है।

दोस्तों, कभी कभी दिल की धड़कनों में कोई अनकही सी आहट उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब चुपके सी पलकों पर दस्तक दे रहा हो, जैसे किसी के आने की उम्मीद ने मन के आंगन में दीप जला दिए हो। मोहब्बत का एहसास भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, जहां किसी को तलाशती हैं ये आंखें और दिल, किसी अपने के कदमों को सुनने की आहट के लिए बेताब रहता है। इन्हें मीठी भावनाओं और प्रेम की खूबसूरत एहसास को शब्दों में पिरोया गया है इस प्यारे से गीत में, जहां दिल अपने हम सफर की राह देख रहा हो। तो आइए प्यार की मासूम खुशबू और मधुर संगीत से सजे इस सुरीले नगमे का आनंद लेते हैं।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ज़मीन पर नहीं आसमानों में लिखे जाते हैं। कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, उन्हें तकदीर अपने हाथों से सजाती है। जब दो दिलों के बीच मोहब्बत का रिश्ता बनता है तो लगता है मानो रब ने अपनी सबसे खूबसूरत नेमत उन पर बरसा दी हो। मोहब्बत केवल एक एहसास नहीं बल्कि रूह से रूह तक पहुँचने वाली वो पाक रोशनी है जो जीवन के हर अंधेरे कोने को उजाले दे देती है। तो और तब हर धड़कन यही कहती है दोस्तों कि ये साथ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि ऊपर वाले की सबसे हसीन मर्जी है। इन्हीं रूहानी जज्बातों और प्रेम की मधुर अनुभूतियों से सजा है ये खूबसूरत गीत। तो आइए मोहब्बत के इस पाक

दास्तां और सुरों की इस मनमोहक छांव में कुछ पल बिताते हैं और सुनते हैं ये दिल को छू जाने वाला नगमा। कभी कभी किसी का मिल जाना यूं लगता है दोस्तों, जैसे दुआ ने खुद चलकर मंजिल का पता दे दिया हो।

शुतो जब मोहब्बत अपनी गहराइयों को छूती है तो वो केवल एक रिश्ता नहीं रह जाती बल्कि जीवन का आधार बन जाती है। तब किसी अपने की मौजूदगी सांसों में घुल जाती है और उसकी जुदाई का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। रूह जैसी रूह से जुड़ जाती है और हर दुआ में बस उसी का नाम शामिल हो जाता है। प्रेम का यही समर्पण, यही अपनापन और यही रूहानी एहसास इस गीत में बड़ी खूबसूरत अंदाज में झलकता है। ऐसा लगता है मानो एक दिल अपने हमसफर से कह रहा हो कि तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, तुम्हारे बिना हर खुशी फीकी है और तुम्हारे साथ ही मेरी दुनिया मुकम्मल है। तेरा साथ मिले तो हर राह इबादत बन जाए, तेरी मुस्कान से ही मेरी दुनिया जगमगाए। रब से बस इतनी सी इल्तजा है मेरी कि तू साथ रहे तो हर सांस में बहार आए।

दोस्तों, जब प्रेम केवल एक एहसास न रहकर साधना बन जाए, जब किसी का नाम दिल की धड़कनों में इस तरह बस जाए कि हर सांस उसी का जिक्र करने लगे, तब मोहब्बत रूह की इबादत बन जाती है। मन का हर कोना उसी की याद से महकता है और हर दुआ में उसी के नाम का उजाला उतर आता है। प्रेम की यही गहराई, यही समर्पण और यही रूहानी मिठास इस गीत में झलकती है। ऐसा लगता है मानो कोई दिल अपने प्रिय के नाम की माला जपते जपते प्रेम के उस मुकाम पर पहुंच गया हो, जहां दुनिया की हर आवाज से बढ़कर बस एक ही नाम सुनाई देता है। तेरे नाम की खुशबू से महकती हैं मेरी राहें, तेरे ख्याल से सजती हैं मेरी चाहतें। अब तो हर धड़कन की बस यही कहानी है। तू मेरी दुआ भी है और मेरी जिंदगानी भी है।

शुदो मोहब्बत जब अपनी सबसे हसीन सूरत में सामने आती है तो कभी किसी की मुस्कान बन जाती है, तो कभी कलाई में सजी कंगनों की खनक। उस खनक में न जाने कितने ख्वाब, कितने चाहते और कितनी अनकही बातें छुपी होती हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खनकते कंगनों ने आज फिर एक राज खोल दिया, जिसे लब न कह पाए उसे धड़कनों ने बोल दिया।

तो श्रोताओं, सुरों की महक और यादों की खुशबू से सजा हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है फिल्मी गीतों के इन रंग बिरंगे फूलों ने आपके मन को छुआ होगा, आपकी मुस्कान को और भी खूबसूरत बनाया होगा और कुछ सुनहरी यादों को फिर से ताजा कर दिया होगा। तो अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में फिर से मिलेंगे कुछ नए गीतों और ढेर सारी मधुर भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को खुशियों की धुनों से सजाइए, मुस्कुराते रहिए और संगीत से अपना रिश्ता बनाए रखिए। गीत खत्म हो सकते हैं मगर उनकी गूंज दिलों में देर तक ठहरी रहती है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक।

0: मैनू श्रीना का प्यार भरा नमस्कार। मैनू कैसी हैं? आज हम ढेर सारी बातें तो करेंगे ही, साथ ही एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता भी सुनेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी

0: अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: बहनों, नारी लोक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। बहनों, किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर है, ये तो हम सभी जानते हैं। बहनों, उनके अनुभव और ज्ञान मार्गदर्शन से नई पीढ़ी को दिशा मिलती है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में समर्पित किया होता है और इसलिए उनका सम्मान, सुरक्षा और देखभाल करना हम सभी का, यानी कि नागरिकों का नैतिक सामाजिक दायित्व है। लेकिन बहनों, दुर्भाग्यवश आज उनके बुजुर्ग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक साथ ही आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं। इसी गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 जून यानी आज के दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बहनों, विश्व स्तर पर बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की समस्या को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया गया था। जैसे जैसे विश्व में वृद्ध जनसंख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी सामने आने लगे। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जागरूकता फैलाने की आवश्यकता महसूस की और बहनों, वर्ष 2006 में पहली बार बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। बहनों, भारत एक सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों वाला देश माना जाता है, जहां सदियों से बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव जैसी शिक्षाएं भारतीय संस्कृति का आधार रही है। फिर भी बहनों, आधुनिक जीवन शैली और सामाजिक परिवर्तनों के कारण बुजुर्गों की स्थिति में कई चुनौतियां उत्पन्न हुई है। संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों की बढ़ती संख्या, रोजगार के लिए पलायन, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और व्यस्त जीवन शैली के कारण अनेक बुजुर्ग अकेले रहने को विवश हैं। कई वृद्धजन आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। यह दिवस बहनों, लोगों को बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाता है। इसके माध्यम से समाज को यह समझाया जाता है कि वृद्धजन केवल देखभाल के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे सम्मान, प्रेम और सुरक्षा के भी अधिकारी हैं। हम सभी को अपने घर और समाज के बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनके साथ समय बिताना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनकी बातों को सुनना और उन्हें सम्मान देना हमारा दायित्व है। मैंने हमें यह याद रखना चाहिए कि आज के बुजुर्ग कभी हमारे परिवार और समाज के शक्ति थे और भविष्य में हमें भी इसी अवस्था से होकर गुजरना है। यह दिवस हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने बुजुर्गों को वह सम्मान और सुरक्षा दे रहे हैं जिसके वे अधिकारी हैं। एक आदर्श समाज वही है जहाँ वृद्धजन भय, उपेक्षा और शोषण से मुक्त होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। और बहनों, इसीलिए समय समय पर उनकी सुरक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए कानून बनाए जाते हैं, या यूं कह ले कि कानून बनाए गए हैं, उन्हें उस कानून को

0: जानना बेहद जरूरी है। तो इसी विषय पर सुनते हैं पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय है बुजुर्गों के भरण पोषण के लिए कानून और हमारी बातचीत हो रही है अधिवक्ता रेणु कुमारी घोष जी से। बहनों नमस्कार। कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा दोनों जीवन काल की दो ऐसी अवस्थाएं होती है जहां मनुष्य को प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे देश में तो बुजुर्गों को उस पेड़ की तरह माना जाता रहा है जो जब तक खड़ा है वो तब तक तपती धूप में छांव देता रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहाँ बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून है और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान भी किए गए हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो आज हम इस भेंट वार्ता के माध्यम से जानेंगे कि भरण पोषण कानून क्या है और इनकी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है भागलपुर की जानी मानी अधिवक्ता रेणु कुमारी घोष। रेणु जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भरण पोषण कानून क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई।
1: बहुत अच्छा सवाल किया है आपने
0: जी।
1: देखिए सबसे जरूरी बात बताना यह है कि संविधान के अधीन प्रत्याभूत और मान्य माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के और कल्याण के लिए विधेयक का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रभावी करने के लिए था
0: जी।
1: इसके अलावे माता पिता का उनके परिवार द्वारा भरण पोषण जो लीगल राइट
0: जी जी
1: होता है उस को जो है विधिक अधिकार के रूप में बनाने के लिए था
0: जी।
1: अब आपने भरण पोषण के बारे में जो पूछा है
0: जी,
1: इसमें मैं बता दूं कि तीन अधिनियम है
0: जी।
1: पहले जो पुराने अधिनियम थे के मुताबिक उस समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के मुताबिक जो भरण पोषण का परिभाषा है
0: जी,
1: उसके अनुसार माता पिता जो है वो अपने बेटों से भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस के लिए भरण पोषण जिसे हिंदी में कहते हैं उसके लिए वो खर्च का मांग करते थे। लेकिन अब इसकी जटिलता और इसमें लगने वाले जो समय होते हैं उससे जो है माता पिता या वृद्ध लोग जो हैं वो कुछ अपने को असमर्थ पाते थे कि समय पर न्याय नहीं मिल रहा है या खर्च ज्यादा हो रहा है दोनों तरह से। लेकिन 2007 में जो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम बना इसके तहत भरण पोषण के अलावे इसमें और दो बातें जोड़ी गई हैं। पहला तो है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता आधारित भरण पोषण प्रदान। दूसरा है कि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जो कि बूढ़ों के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है वृद्धों के जीवन और संपत्ति भी उसमें जोड़ा गया है
0: जी जी।
1: उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा तंत्र बनाया गया है, ऐसा तंत्र सरकार की ओर से स्थापित किया गया है जो बड़े बूढ़ों और माता पिता के लिए।
0: रेणु जी हम ये जानना चाहेंगे कि भरण पोषण के अधिकारी जो है माता पिता है वरिष्ठ नागरिक में कौन कौन आते हैं।
1: देखिए माता पिता के अलावे माता पिता अपनी संतान को के साथ अब जो 2007 अधिनियम बना है और 2014
0: जी
1: जिसमें राज्य को इन्वॉल्व किया गया है
0: जी जी,
1: इसके अंतर्गत जो है लोग अपने संतान के अलावे दत्तक पुत्र पोता पोती
0: जी
1: या ऐसा कोई संबंधी जो उनकी संपत्ति में अपना अधिकार रखते हो संपत्ति पाने के लिए वो ऐसे उत्तराधिकारी वो लोग इसमें आते हैं।
0: So, अपने अभी आपने जो कानून बताया को धारा उसमें वो कैसे मांग सकते हैं उस कानून को,
1: देखिए
0: उस कानून का वो कैसे लाभ उठा सकते हैं।
1: देखिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है धारा 125
0: जी
1: इसके लिए जो है वो जो आवेदन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ आवेदन देना होता है।
0: अच्छा अच्छा
1: और इस प्रक्रिया में जो है और कार्यवाही में अधिवक्ता की आवश्यकता होती है।
0: अच्छा
1: लेकिन वर्तमान में जो एक 2007 और 2014 का अधिनियम बना है इसमें अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है। और चूंकि 125 धारा जो दंड प्रक्रिया संहिता की थी उसमें जो है वो चूंकि अधिवक्ताओं को भी फीस देनी पड़ जाती थी।
0: अच्छा।
1: और समय का भी थोड़ा
0: समय ज्यादा लग जाता था जिसमें माता पिता को परेशानी
1: होती थी। इसलिए ऐसी दशा में 2007 और 2014 में जो कल्याण अधिनियम बनाया है इसमें है कि कोई भी आवेदक वो SDM जिसको हम लोग हिंदी में उसका हो जाता है SDM पदाधिकारी हुए
0: जो
1: अनुमंडल दंडाधिकारी उनके यहाँ जो है वो आवेदन दे सकते हैं
0: जी।
1: और उनका एक अधिकरण गठित है जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है। लेकिन वो अपने यहाँ आवेदन आने के बाद एक मौका देते हैं जो कि बहुत अच्छा बड़े बूढ़ों के लिए जो है ये एक रास्ता है कि वो उस आवेदन को सुलह केंद्र में भेजते हैं और सुलह केंद्र में जो है एक महीने के अंदर जो है उनको समय दिया जाता है कि उनके विपक्षी को बुलाकर उन लोगों में यदि मैत्रीपूर्ण भाव से मामला का निपटारा हो जाता है तो बात वही खत्म हो जाती है और वो सुलह केंद्र जो अपना आदेश देते हैं उसकी कॉपी SDM साहब के यहाँ भेज देते हैं और उसके आधार पर जो उनका देखरेख। और
0: रेणु जी अब मान लीजिए कि किसी को भरण पोषण प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए पर वो नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ आवेदन कर सकते हैं, कहाँ गुहार लगा सकते हैं?
1: इसके लिए मैंने आपसे बताया कि ये आवेदन जो है वो ट्रिब्यूनल अधिकरण में देंगे
0: जी
1: या उनके माता पिता और वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो कहाँ निवास कर रहे हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: उस जगह को देखना है या अंतिम रूप से कहाँ निवास कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: दूसरा है जहां संतान या संबंधी निवास कर रहा है वहां के वो कल्याण पदाधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी या पुलिस प्रशासन इन लोगों को भी दे सकते हैं। अब यहां देखना होता है कि आपकी आवश्यकता कैसी है। यदि संपत्ति और शारीरिक कोई प्रताड़ना हो रही है तो आप पुलिस प्रशासन के पास आवेदन दे सकती हैं। और यदि आपको अपने मेंटेनेंस में रहन सहन में या चूंकि बड़े बुजुर्गों का ये स्वाभाविक है कि वो शारीरिक रूप से सक्षम
0: नहीं हो पाते
1: ऐसे दशा में वो अनुमंडल दंडाधिकारी कल्याण विभाग के पदाधिकारी इनके पास वो आवेदन दे सकते हैं।
0: भरण पोषण देने से संबंधित न्यायालय या अधिकरण की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और वृद्धाश्रम जो बहुत सुनने में आता है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में दे दिए तो वहां जाने की क्या प्रक्रिया है?
1: देखिए
0: पहले तो हम ये जानेंगे चाहेंगे कि वृद्धाश्रम में माता पिता को भेजा ही ना जाए लेकिन किन अवस्था में उनको वृद्धाश्रम भेजा जाता है?
1: देखिए हमारे यहाँ जो है बहुत से ऐसे लोगों का जीवन के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो है 2012 के वृद्धावस्था हेतु वृद्धाश्रम के प्रबंधन का योजना किया गया है। ये 2012 के धारा 20 में जो है स्पष्ट किया गया है कि निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे आश्रम जिसमें भौतिक सुविधाएं हो, आश्रम के अंतः निवासियों के चयन हेतु आश्रम में रहने वाले इच्छुक निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से समुचित अंतराल पर, वो अंतराल क्या होगा, समुचित अंतराल पर किंतु प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार
0: जी।
1: साल में एक बार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
0: अच्छा।
1: आवेदकों की संख्या ज्यादा होने पर जो सबसे अधिक निर्धन तथा जरूरतमंद व्यक्ति होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
0: सही बात।
1: तीसरी बात है कि यदि कोई बात आवेदन में समान है लेकिन उसमें से अब हमको एक आदमी को लेना है तो जो आदमी की ज्यादा शिक्षित नहीं है या सबसे ज्यादा उम्र के हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा एक बात और है कि यदि आवेदन समान हो रहा है तो यदि पुरुष आवेदक है उसके मुकाबले।

0: महिलाओं को
1: प्राथमिकता दी जाएगी। सही जी, बात जी। तो एक ऐसी परिस्थिति में जब वरिष्ठ नागरिक या माता पिता इस शर्त पर कि अपनी संपत्ति वे अपने उत्तराधिकारी का नाम कर चुके होते हैं कि वे उसकी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों का भरण पोषण करेगा, और ऐसे में अगर संपत्ति का अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो क्या माता पिता अपनी संपत्ति वापस ले लेंगे या फिर क्या करेंगे वो?
2: नहीं, संपत्ति वापस लेने की जहां तक बात है, संपत्ति में अधिकार तो उनका जन्म से ही हो जाता है।
1: जी जी जी,
2: हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो बच्चा गर्भ में आ जाता है तो संपत्ति। अब रही बात कि उनके देख रेख, उनकी चिकित्सीय सुविधा या उनकी परिचर्या के लिए आदमी के, इसके लिए वो जो है यही केस दायर कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें यदि ऐसा हो जाता है कि बहुत से बड़े बूढ़े के लड़के विदेश में रहते हैं, संपत्ति रहते हुए भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं कर पाते, और कुछ लोगों के पास है कि वित्तीय आवश्यकता जो है वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है, इन दो तीन कारणों से जो है उनको न्यायालय का शरण लेना पड़ता है। लेकिन अच्छा। अभी जो है ये इतना अच्छा नियम और अधिनियम बन चुका है कि आप इसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ नागरिकों से और कल्याण से संबंधित विभाग के अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी तथा सुलह अधिकारी, पंचायत, नगर पालिका और शैक्षणिक संस्थाओं को ये पावर दिया गया है, शक्ति प्रदान की गई है कि वो लोग भी इस ऐसे आवेदन का निपटारा अपने स्तर से कर सकते हैं।
1: और एक है कि किन किन दशाओं में, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन दशाओं में भरण पोषण का अधिकार, चाहे भरण पोषण उनको नहीं मिलना चाहिए, चाहे नहीं मिल सकता है बुजुर्गों को, वरिष्ठ को, किन किन दशाओं में?
2: देखिए, भरण पोषण का अधिकार तो उनका विधिक अधिकार अब हो चुका है
1: जी।
2: वो तो उनको देना ही
1: देना है, ही देना,
2: दे, देना ही देना है। अब रही बात कि कब और कितनी देनी है
1: जी।
2: तो न्यायालय याधिकरण जो है ये इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि देने वाले की आमदनी क्या है, उनके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं उस पैसे पर
1: जी,
2: और उनको क्या दिक्कत होगी इनके देख रहे क्या स्वास्थ्य संबंधी इसमें, इसलिए वो जो है उस पर तय होगा कि वो कितना और कैसे कर सकते हैं। सुलह केंद्र में जाने के बाद भी इस पर तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाता है कि जब सुलह केंद्र में दोनों के बीच एक सद्भावनापूर्ण वातावरण तैयार हो जाता है, दोनों एक दूसरे को रखने देते हैं, तो वहां तो और भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि कितने समय में कितना और कब कैसे दीजिएगा, ये उसका एक रिपोर्ट बनता है और तब वो जो है प्राधिकरण में जाता है।
1: और एक बात ये भी जानना चाहेंगे हम
2: जी?
1: कि ये बुजुर्ग जो है वो किन किन लोगों से, अपने परिवार के किन किन लोगों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
2: इसके लिए सबसे उपयुक्त तो पहले संतान ही है
1: जी,
2: और इसके बाद नए कानून के तहत जो है वो अपने पोते पोती, दत्तक पुत्र,
1: अच्छा।
2: और जो वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति में जो अधिकार लेना चाहते हैं या उस संपत्ति में अपना वो जो उनके उत्तराधिकारी होंगे वो लोग भी,
1: उत्तराधिकारी में क्या बेटी भी आएंगी?
2: बेटी तो संतान जब हो गया,
1: संतान तो वो भी भरण पोषण करेगी,
2: है ना? इसमें ये नहीं है,
1: नहीं तो शादी के बाद भी क्या वो माता पिता का भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा सकते हैं,
2: संतान
1: लिखा और माता पिता जो है वो भी बेटी से भी मदद मांग सकते हैं।
2: मदद नहीं, वो उनका विधिक अधिकार है,
1: हक है।
2: हाँ, पहले ये नैतिक अधिकार था और इसको जो है अब ये एक्ट बनाकर विधिक अधिकार दे दिया गया है कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप दंड के भागी भी बनेंगे।
1: अच्छा अच्छा, अगर पुत्र नहीं कर रहा है तो बेटी से भी मांग ले, लेकिन आजकल माता पिता पहले तो पुत्र के ही आगे मतलब मांग करते हैं।
2: हाँ, लेकिन चूंकि अब जो है समान रूप से
1: दोनों बराबर
2: हैं और दोनों के लिए खर्च भी बराबर करना पड़ता है, तो इसलिए ये शुरू में था कि ये नैतिक अवधारणा थी इसकी, लेकिन अब जब से विधिक हो गया है आप उनकी संपत्ति में, तो इसमें लगा दिया गया है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी जो भी होगा
1: जी, जी
2: उसे आप मांग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: और मैं यहाँ पर एक बात और जानकारी दूँ कि अब आप ये पूछ सकती हैं कि कौन कौन इसके लिए कर सकता है आवेदन यदि माता पिता बूढ़े हैं।
1: हाँ,
2: बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ, कि उनके तो वो खुद कर सकते हैं आवेदन या उनके कोई अभिकर्ता जिनको उन्होंने प्रतिनियुक्त किया हो,
1: वो
2: कर सकते हैं, या कोई गैर सरकारी संगठन भी कर सकता है
1: जी
2: उनकी तरफ से,
1: तो
2: वो मामला को वो ला सकते हैं।
1: अच्छा,
2: या तो अधिकरण के समक्ष ना, या न्यायालय के समक्ष ना।
1: तो भरण पोषण देने से संबंधित न्यायालय या अधिकरण के जो जिम्मेदारियां हैं
2: जी
1: वो तो आपने बता दिया, और ये बताइए कि न्यायालय के आदेश के बाद भी अगर उनका भरण पोषण उनके बच्चे नहीं करते हैं तो फिर वो ऐसी अवस्था में क्या हो सकता है? न्यायालय आदेश दिए उसको वो नहीं मान रहे हैं और भरण पोषण नहीं करके वृद्धा आश्रम में भेज दिए हैं माता पिता को, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं इनके लिए?
2: देखिए इसमें भी जो है अधिकरण या न्यायालय को यह देखना होता है कि वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता क्या पड़े
1: जी,
2: क्यों जाना पड़ा,
1: क्यों जाना पड़ा,
2: और वो इसके लिए विपक्षी जो उनके देनदार हैं, बेटे हो बेटी हो जो उत्तराधिकारी, उनको नोटिस देकर बुलाया जाता है और उनकी भी बातों को सुना जाता है
1: जी।
2: और उसमें यदि वो ऐसा तर्क देने से घबराते हैं वो कि नहीं भागना चाहते हैं अपनी दायित्व से,
1: जिम्मेदारी
2: दायित्व से भागना चाहते हैं, तो यदि एक आदेश हो चुका है तो ये फिर अपील में भी जा सकते हैं
1: जी।
2: और अपील में जो है इनके लिए जो है दंड और सजा का भी प्रावधान है,
1: सजा भी हो
2: सकती है।
1: तो कितने साल की सजा हो सकती है?
2: कोर्ट वो निश्चित करता है कि कैसी आमदनी है, कैसा उनका डिमांड है, निर्भर करता है, या फिर वो कितने बार वो आदेश का उल्लंघन कर चुका है।
1: कितने? अच्छा अच्छा,
2: कोई किसी संगठन के लोग जो गैर सरकारी संगठन है वो उनको ये जानकारी हो जाती है तो वो लोग भी इनको भरपूर मदद करें, कानून हर हमेशा इनके लिए तैयार है।
1: ये क्या विधवा बुजुर्ग महिला के लिए?
2: नहीं तो बुजुर्ग में तो दोनों ही आते
1: हैं,
2: दोनों ही आते हैं, लेकिन इनकी स्थिति कुछ ज्यादा निम्नतर है
1: जी जी
2: विधवाओं की
1: बहुत।
2: और यदि उनके बाल बच्चे भी देख रेख नहीं कर रहे हैं और पति भी नहीं है तो आप समझ सकती है समाज में
1: स्थिति कितनी गंभीर है
2: जी। तो इसके लिए उन्हें कुछ हिम्मत करनी होगी और आसपास हम लोगों को के यहाँ से विधिक जागरूकता का भी शिविर लगाया जाता है, उन लोग उनके द्वारा मीडिया के द्वारा, दूरदर्शन हो आपके आकाशवाणी के द्वारा,
1: जी
2: सब बातों की जानकारी के लिए जो है ये लोग सक्षम है कि उनको जानकारी दी जाए और वो अपने अधिकार को लेने के लिए।
1: रेनू जी आपने बहुत ही विस्तार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था बुजुर्गों के भरण पोषण के लिए कानून, बातचीत हो रही थी अधिवक्ता रेनू कुमारी घोष जी से। मैनू ये तो सच है कि बुजुर्ग घर के वृद्ध सदस्य ही नहीं है बल्कि वे हमारे मार्गदर्शक है, पूजनीय है।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा आ गया है, बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 से 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले

0: उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
2: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
2: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
2: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चार।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
1: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी।

0: तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने यह सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
2: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
1: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
2: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
2: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
1: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
2: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
3: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
3: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
3: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
3: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
3: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
3: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
3: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
4: मास्टर जी, नोटिस है।
3: लो।
0: मास्टर जी ने कहा,
3: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
3: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
3: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
3: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
3: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
5: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
6: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
6: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है।
3: उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
4: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए जय नारायण तांती के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं देवी गीत।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार हैं शर्मिला गुप्ता।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किया जारी। 21 जून को होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रांची माहुलिया टाटा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के 126 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास के लिए 214 करोड़ रुपए की ओवरले परियोजना स्वीकृत। रांची रेल मंडल ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सैकड़ों कोचों में लगाएगा सीसीटीवी। और केरल में इंडियन एथलेटिक सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रांची के विशाल बहादुर ने हासिल किया दूसरा स्थान। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को होगी। एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से डीवीसी कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बढ़ती मांग के अनुरूप इन जिलों को 800 मेगावाट बिजली की जरूरत है। इधर पतरातु थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी यूनिट से 800 मेगावाट बिजली उत्पादन जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद डीवीसी कमांड एरिया के जिलों में बिजली आपूर्ति में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर प्रोजेक्ट भवन से निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पूरे राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और नशे की रोकथाम के लिए लोगों को प्रेरित करना है। गुमला जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने आज समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को लेकर नशा मुक्ति प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले में नशा के खिलाफ आगामी 26 जून तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा।
2: नशा को कैसे हम लोग नियंत्रित करेंगे, इसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी जागरूक करके और वो जाकर अपने परिवार के लोगों को कैसे समझाएं, इसके दुष्प्रभाव और वास्तव पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ नशापन के कारण अपराध देखने को मिलता है।
1: जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती, देश के सुख समृद्धि और समाज के सर्वांगीण विकास की कामना को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने चूना शाह बाबा की मजार पर चादर पोशी कर विशेष दुआ की। लोगों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में सहभागी हैं।
3: समाज के आखिरी व्यक्तियों तक पहुंच करके उसे पहली पंक्ति में ला के खड़ा करना, चाहे वो जिस समुदाय से आता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का विकास हो। वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी समाज का कोई भी वर्ग अगर छूट जाएगा तो ये देश उन्नति नहीं करेगा।
1: धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र में बिना लाइसेंस के उर्वरक, बीज और कीटनाशी बेचने के मामले में कृषि विभाग ने दुकान को सील कर दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने कहा कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
4: दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से जो कीटनाशी है वो बड़ी मात्रा में पाया गया है, जबकि इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं। इनके बार बार कहा गया कि आप अपना अनुज्ञप्ति प्रेषित करें, परंतु किसी भी प्रकार से अपनी अनुज्ञप्ति प्रेषित नहीं कर पाए। साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ कुछ अनियमितताएं भी पाई गई है, तो इसलिए उसको जब्ती करते हुए दुकान को सील किया जा रहा है।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से रांची माहुलिया टाटा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए 214 करोड़ 79 लाख की ओवरले परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसका निर्माण 18 जून को भूमि पूजन के बाद शुरू होगा। इससे रांची जमशेदपुर के बीच आवागमन आसान होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। रांची रेल मंडल ने ट्रेन की बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में तेजी से पहल की है। पहले चरण में 150 बोगी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि 730 अतिरिक्त कोचों में कैमरे लगाने के लिए निविदा निकाली गई है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी, छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लाना है। जमशेदपुर प्रधान डाकघर परिसर में कल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में डाक कर्मियों और स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। डाक सहायक चंडीचरण साधु ने 60वीं बार, श्यामल महतो ने 36वीं बार, जबकि चूना राम हांसदा ने 33वीं बार रक्तदान किया। मौके पर वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि डाक विभाग आगे भी सामाजिक अभियान जारी रखेगा।
0: थीम है इस वर्ष का, मानवता की एक बूंद जिंदगियां बचाए। हमारे डाक परिवार के स्टाफ से, ग्रामीण डाक सेवकों जो रक्तदान करेंगे, उनसे अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। इसी थीम को दिमाग में रखते हुए मैंने ये आयोजन आज जमशेदपुर प्रधान डाकघर में करवाया है।
1: धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में असम की एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि युवती के आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
5: एक लड़की के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और इस लड़के को वहां से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहां से वो यहां घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना कारित हुई।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर शुरू हुआ, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंकों की बढ़त के साथ 23985 पर खुला। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित इंडियन एथलेटिक सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप में रांची के विशाल बहादुर ने 16.10 मीटर की छलांग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन ने बधाई दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किया जारी। 21 जून को होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रांची महुलिया टाटाखंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास के लिए 214 करोड़ रुपए की ओवरले परियोजना स्वीकृत। रांची रेल मंडल ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी, छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सैकड़ों कोच में लगाएगा सीसीटीवी। और केरल में इंडियन एथलेटिक सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रांची के विशाल बहादुर ने हासिल किया दूसरा स्थान। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग को पुनः जारी रखते हुए शर्मिला गुप्ता की आवाज में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं शर्मिला गुप्ता।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थी शर्मिला गुप्ता। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन के सभी प्यारे बहनों को कमली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, तेज गर्मी के बाद अब शुरू होने वाला है बरसात का मौसम, रिमझिम रिमझिम फुहारों का मौसम, और हम गृहस्थ किसान भाई बहनों के लिए तो यह मौसम जैसे खुशियां और बरकत लेकर आता है। इसीलिए तो बरसात शुरू होने से पहले ही हम किसान गृहस्थ लोग खेतों की तैयारियां कर लेते हैं, बीजों बिचड़ों की व्यवस्था में लग जाते हैं, ताकि बरसात शुरू होते ही हमारे खेतों में नई जान आ जाए। हम बहनों को भी कई सारी तैयारियां करनी होती है ताकि बरसात में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके। हाँ बहनों, बरसात शुरू होने से पहले हमें अपने घर की कुछ व्यवस्थाओं को पहले ही दुरुस्त कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहनों, अभी हमें घर में हमारे घर में रसोई घर में रखे अनाज, दालों, मसालों, अचार, पापड़, बड़ियों सभी को संभालना होता है कि कहीं इनमें घुन या कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, और इन्हें साफ कर चुन कर हमें इन्हें धूप दिखा लेना बहुत ज़रूरी है बहनों, क्योंकि अभी तेज़ धूप आ रही है और एक दिन तेज़ धूप में रखने से इनकी नमी समाप्त हो जाती है और ये सारी चीज़ें तरोताज़ा हो जाती हैं और लंबे समय तक रखने के लिए सुरक्षित भी हो जाती हैं। धूप दिखाने के बाद हमें जिन अनाजों दालों को लंबे समय तक रखना है उनमें नीम की पत्तियां सुखाकर डाल देना अच्छा होता है, इससे उनमें कीड़े नहीं लगेंगे। साथ ही हमें अपने पीसे हुए मसालों को भी सुखाकर किसी एयरटाइट बोतल में या छोटे मुंह की बोतल में भरकर रख लेना चाहिए ताकि वे खराब ना हो, और अगर बहनों उन्हें लंबे समय तक प्रयोग में लाना है तो अच्छा होगा कि हम उनका मुंह पिघले हुए मोम से बंद कर दें ताकि उनमें नमी प्रवेश न कर सके और इस तरह वे सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ बहनों, अभी समय यह भी है कि हम अपने रसोई घर को साफ सुथरा करके कीटाणु मुक्त बना लें, यह बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर हमें अपने रसोई की साफ सफाई करके अनावश्यक चीज़ों को छांटते रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी रसोई घर बहुत भरी भरी ना हो, साफ सुथरी हो और कीटाणु मुक्त भी बनी रहे। यही काम बहनों हमें अपने घर की अलमारियों, दराजों, अटारियों का भी करना है, और बरसात से पहले इनकी साफ सफाई कर देने से अनावश्यक चीज़ों का बोझ तो कम होता ही है, साथ ही साथ कहीं अगर दरारें हो, टूट फूट हो या कहीं की पॉलिश उतर गई हो तो उनकी मरम्मत भी कराई जा सकेगी, जिससे कि बरसात में हमारे घरों में पानी का प्रवेश नहीं होगा, अलमारियों में, दीवारों में सीलन नहीं होगी, और घर की सफाई भी हमें बहुत ज़रूरी है करवा लेना। और हम जो है छत की सफाई करते समय हमें बहुत ज़रूरी है कि अनावश्यक गमले, टूटे हुए डिब्बे, कनस्तर, बोतलें, इन सब को हटा देनी है ताकि इनमें बारिश का पानी जमा नहीं हो, क्योंकि बहनों अगर इनमें जल जमा होता है तो मच्छरों के लार्वा इनमें अपना घर बना सकते हैं और यह स्थिति हम सबों के लिए खतरनाक बन सकती है ना बहनों, क्योंकि मच्छरों से कई कई तरह की खतरनाक बीमारियां होती है बहनों, और इनसे सुरक्षा रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बहनों हमें इन सब को साफ करना ज़रूरी है, और वैसे भी हमारे बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि छतों पर व्यर्थ के कबाड़ जमा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने आसपास के जो भी जंगल झाड़ हों उन्हें समय समय पर काटते छाटते रहना चाहिए ताकि मच्छरों से और विषैले जीव जंतुओं से सुरक्षा निश्चित हो सके। यही काम हमें अपने नालियों का भी करना है, उनकी साफ सफाई करके उन्हें दुरुस्त कर देना ताकि पानी का प्रवाह बना रहे और उसमें कचरा जमा ना हो। इन बातों का ध्यान हमें बरसात आने से पहले जरूर कर लेना चाहिए। बहनों आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ संदेशों को सुनते हैं और फिर सुनते हैं एक बारह मासा।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: बहनों, आम का मौसम आ पहुंचा है, मीठे मीठे सुगंध भरे आम, और इन्हें खाना किन्हें अच्छा नहीं लगता। अभी तो आम ही भोजन में, आम ही नाश्ते में, और कभी हम आम का अमरस बनाते हैं। अभी तो घर घर में आम के अचार भी बनाए जा रहे हैं, आंगन में आमों के मर्तबान सूखते नजर आ रहे हैं। बहनों, जब आम बहुतायत में हो, खेतों से आए, तो हम इन्हें कई तरह से संरक्षित भी करते हैं और तरह तरह से इनके पौष्टिक पदार्थ भी बनाते हैं। तो आइए बहनों, एक पूर्व प्रसारित वार्ता के जरिए आम के पौष्टिक पदार्थ बनाना जाने, लेकिन पहले एक अंतराल।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: किसान भाइयों एवं बहनें, कच्चे आम का बहुत सारे पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं और यह स्वादिष्ट भी होता है। कच्चा आम का शरबत लू के मौसम के लिए रामबाण का कार्य करता है। जब लू में आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक गिलास कच्चे आम का शरबत पी कर निकलेंगे तो आपको लू नहीं मारेगा। कच्चे आम का विभिन्न पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं, जैसे कच्चा आम का जैम, शरबत, मीठा अचार, नमकीन अचार, कच्चे आम का मुरब्बा इत्यादि। कच्चे आम का जैम इस प्रकार आप बना सकते हैं, सामग्री आप नोट कर लें। कच्चा आम का गूदा 1 kg, चीनी 1.5 kg, कच्चे आम का सुगंधी ग्रीन मैंगो एसेंस स्वाद के अनुसार, खाने वाला हरा रंग थोड़ा सा, सोडियम बेंजोएट 1 चाय चम्मच, मतलब छोटा चम्मच से 1 चम्मच। करना चाहते हैं तो पुनः नोट कर लें। कच्चा आम का गूदा 1 kg, चीनी 1 kg, कच्चे आम का सुगंधी यानी ग्रीन मैंगो एसेंस स्वाद के अनुसार, खाने वाला हरा रंग थोड़ा सा, सोडियम बेंजोएट 1 छोटा चम्मच। बनाने की विधि, कच्चा आम को छीलकर पीस पीस काट लें, उसमें 1 kg पानी डालकर उसको सिझा लें या पका लें। जब पक जाए उसमें एक चूल्हा पर चढ़ा दें, उसे उतार दें और स्टील की चलनी से रगड़ रगड़ कर छान लें। अब उसमें चीनी मिलाकर चूल्हा पर पुनः चढ़ा दें और बीच बीच में चलाते रहें। अब जैम तैयार हुआ या नहीं इसकी जांच के लिए 1 प्लेट में 1 चम्मच जैम डालेंगे। जैम प्लेट में डालते के साथ यदि जम जाए तब समझें कि जैम तैयार हो गया। अब चूल्हा पर से उतार दें। जब जैम ठंडा हो जाए तब उसमें ग्रीन मैंगो एसेंस मिला दें, खाने वाला हरा रंग मिला दें, थोड़ा पानी खौला कर ठंडा कर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी और सोडियम बेंजोएट को घुला लें। सोडियम बेंजोएट पाउडर के जैसा होता है, इसलिए इसे पानी में घुलाते हैं। जब घुल जाएगा तब उसको जैम में मिलाकर तुरंत साफ चौड़े मुंह वाले शीशी में रख देंगे। जब बोतल लवालब भर जाएगा तब उसमें मोम पिघला कर डाल देंगे। ऐसा करने से सील्ड पैक हो जाएगा और इसे एक मौसम से दूसरे मौसम तक सुरक्षित रख सकते हैं। जब जैम की खाने उपयोग करने की आवश्यकता होगी तब जो आप मोम को पिघला कर ऊपर डाले हैं वह परत जम जाएगा, उसको आप निकाल लेंगे, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैम का उपयोग रोटी पाव रोटी के साथ करते हैं। अब आपके सामने मैं कच्चा आम का शरबत बनाने की विधि बता रही हूँ। सामग्री आप उसका नोट कर लें। कच्चा आम का गूदा 1 kg, चीनी 1.5 kg, साइट्रिक एसिड 5 ग्राम, ग्रीन मैंगो एसेंस स्वाद के अनुसार, खाने वाला हरा रंग थोड़ा सा, पोटासियम मेटावाइसल्फाइट 3 ग्राम। बनाने की विधि, कच्चा आम को धोकर छीलकर पीस पीस काटकर उसमें 1 kg पानी डालकर चूल्हा पर सिझा लें या पका लें। जब पक जाए तब चूल्हा पर से उतार लें और स्टील की चलनी से रगड़ रगड़ कर छान लें। 1.5 kg चीनी में 3 पाव पानी डालकर चूल्हा पर चढ़ा दें। बीच बीच में चलाते रहें। जब चीनी पानी खौलने लगे एवं चीनी उसमें गल जाए तब उसमें साइट्रिक एसिड डाल दें। जब साइट्रिक एसिड डालेंगे तब उसमें चीनी का मैल गाज के रूप में ऊपर फेन के जैसा आएगा, जिसको कि आप जो है उसे निकाल कर फेंक देंगे। ऐसा करने से चीनी का चाशनी साफ हो जाएगा। अब चूल्हा पर से उतार दें। जब चाशनी ठंडा हो जाए तब आम के रस में मिला दें, ग्रीन मैंगो एसेंस मिला दें, खाने वाला हरा रंग मिला दें। अब शरबत तैयार हो गया। ज़्यादा दिन तक रखने के लिए थोड़ा सा पानी खौला कर ठंडा कर एक कटोरी में पोटासियम मेटावाइसल्फाइड का पाउडर डालकर उस पानी में घुला लें और शरबत में मिला दें और लंबे गर्दन वाले छोटा मुंह वाला शीशी में उसके गर्दन तक भर दें। ढक्कन बंद कर दें। गर्दन तक भरने इसलिए भरते हैं क्योंकि उसमें अगर लवालब भर देंगे तो वह तरल होने के कारण उसमें फर्मेंट करने की आशंका रहती है, इसलिए गर्दन तक ही भरते हैं। ढक्कन के ऊपर मोम पिघला कर डाल देंगे तो सील्ड पैक हो जाएगा और एक मौसम से दूसरे मौसम तक सुरक्षित रख सकते हैं। यह रेडीमेड शरबत है। एक बोतल शरबत में 10 ग्लास शरबत बनेगा। ऊपर से चीनी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी में यह शरबत रामबान के जैसा काम करता है। धूप में निकलने के पहले 1 ग्लास शरबत पीकर घर से निकलेंगे तो लू नहीं मारेगा। अब मैं आपके सामने कच्चे आम का पन्ना बनाने की विधि बता रही हूँ। सामग्री, कच्चा आम का गूदा 1 kg, चीनी 500 ग्राम, साइट्रिक एसिड 3.5 ग्राम, नमक स्वाद के अनुसार, जल जीरा 1 पैकेट, गोल मरीच पाउडर 20 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, काला नमक 20 ग्राम, भुना जीरा पाउडर 10 ग्राम, भुना अजवाइन पाउडर 10 ग्राम, पुदीना पीसकर 200 ग्राम, पोटासियम मेटावाइसल्फाइट 3 ग्राम। पुनः एक बार सामग्री को नोट कर लें। कच्चा आम का गूदा 1 kg, चीनी 500 ग्राम, साइट्रिक एसिड 3.5 ग्राम, नमक स्वाद के अनुसार, जल जीरा 1 पैकेट, गोल मरीच पाउडर 20 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, काला नमक 20 ग्राम, भुना जीरा पाउडर 10 ग्राम, भुना अजवाइन पाउडर 10 ग्राम, पुदीना पीसकर 200 ग्राम, पोटासियम मेटावाइसल्फाइट 3 ग्राम। बनाने की विधि, कच्चा आम को धोकर छीलकर पीस पीस काट लें। कटे हुए कच्चे आम में 1.5 kg पानी डालकर चूल्हा पर चढ़ा दें। अब 500 ग्राम चीनी में 1 पाव पानी डालकर चूल्हा पर चढ़ा दें। जब चीनी पानी खोलने लगे एवं चीनी गल जाए तब समझें कि चाशनी तैयार हो गया। अब उसमें साइट्रिक एसिड डाल दें। साइट्रिक एसिड डालते ही उसमें चीनी का मैल गाज के रूप में ऊपर आएगा, उसे निकाल कर फेंक देंगे और चाशनी का को चूल्हा पर से उतार देना है। जब चाशनी ठंडा हो जाए तब आम के रस में मिला दें। जलजीरा, गोलमरीच पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक पाउडर, भुना जीरा पाउडर एवं अजवाइन पाउडर सभी को मिला दें। अब मसालेदार पन्ना तैयार। एक मौसम से दूसरे मौसम तक रख सकते हैं। पोटासियम मेटावाई सल्फाइड थोड़ा सा खौलाकर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसमें पोटासियम मेटावाई सल्फाइड घुलाकर पन्ना में मिला दें, ढक्कन बंद कर दें, ऊपर से मोम पिघलाकर डाल दें। ऐसा करने से सील्ड पैक हो गया एक बोतल पन्ना में 10 ग्लास शरबत बनेगा। और आप इसमें जो है यह आपका मसालादार पन्ना तैयार हो गया। आप इसको कब रेडीमेड ये पन्ना है, जब चाहें तब आप ग्लास में थोड़ा पानी लेकर एक बड़ा चम्मच से उसमें डालेंगे और घोल के आप पी सकते हैं। अब मैं आपके सामने कच्चे आम का मीठा एवं नमकीन अचार बता रही हूँ। सामग्री इस प्रकार है। कच्चा आम 1 केजी, गुड़ 1 केजी, नमक 100 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार 5 फोरन थोड़ा सा, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, हींग 2 ग्राम, भुना सौंफ पाउडर 20 ग्राम, भुना मेथी पाउडर 20 ग्राम, भुना अजवाइन पाउडर 20 ग्राम, सरसों तेल 350 ग्राम। पुनः एक बार फिर से नोट कर लें। कच्चा आम 1 केजी, गुड़ 1 केजी, नमक 100 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार 5 फोरन थोड़ा सा, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, हींग 2 ग्राम, भुना सौंफ पाउडर 20 ग्राम, भुना मेथी पाउडर 20 ग्राम, भुना अजवाइन पाउडर 20 ग्राम, सरसों तेल 350 ग्राम। बनाने की विधि। कच्चा आम को धोकर छील लें, पीस पीस काट लें, 2 दिन नमक और हल्दी पाउडर में मिलाकर धूप दिखा दें, उसमें पानी छोड़ेगा। 3रा दिन आम को नमक हल्दी पानी से निकालकर चूल्हा पर कढ़ाई में तेल डालकर चढ़ा देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब उसमें हींग कड़काकर और 5 फोरन डालकर आम को छौंक देंगे। जो नमक हल्दी पानी से निकाले हैं वह जो है आम में डाल देंगे। उसके बाद उसमें गुड़ मिला देंगे, नमक हल्दी वाला बचा हुआ पानी भी उसमें डाल देंगे, अजवाइन मेथी सौंफ का भुना हुआ पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब गुड़ आम में लटपट हो जाए तब चूल्हे पर से उतार कर चौड़े मुंह वाले जार में रख देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। अब मीठा नमकीन अचार तैयार हो गया। इसको एक मौसम से दूसरे मौसम तक रख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर में संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। थी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: जी बहनों, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे आम के पौष्टिक पदार्थ बनाने के बारे में बातें जाना और निश्चय ही हमारी बहनों के लिए ये जानकारियाँ लाभप्रद सिद्ध होंगी। तो बहनों, आम की नए नए व्यंजन बनाइए ढेर सारे, ताकि हम उन्हें अच्छी तरह खा सकें और अगले मौसम तक के लिए सहेज भी सकें। तो अभी आम कई प्रकार के आ रहे हैं, आम के अचार के लिए भी आम आ रहे हैं, चटनियां हम उनसे बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं जैसे कि हमारी बहन ने बताया। तो हम सबको इन सब चीज़ों की व्यवस्था अपने रसोई घर के लिए करनी है, ताकि हम इन्हें बनाकर अपने हाथों के जादू से अपने घर परिवार वालों को भी मंत्रमुग्ध कर सकें। और बहनों, आम तो वैसे भी सबको बहुत ही पसंद होता है, तो हम उन्हें कई कई तरीकों से जब बनाएंगे तो निश्चय ही इनकी पौष्टिकता जो है वो भी हम सहेज सकेंगे और स्वाद में जो एक बदलाव आता है वो भी सबों को बहुत ही भाएगा। तो बहनों, इस तरह से हम अपने आमों के को कई तरह से सहेज कर बना सकते हैं और सबों को बहुत ही खुश भी कर सकते हैं। और बहनों, हमारे कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दें सबों को, कमली का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज संयुक्त रूप से गया जिले के खीचरसराय में प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन और श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रौद्योगिकी केंद्र से प्रतिवर्ष लगभग 7000 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल परीक्षण केंद्रों पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFTV के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यालय से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र को नई रफ्तार। वहीं मुख्यमंत्री आज ही भोजपुर जिले के वाणासुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क में प्रदेश की नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज से अभियान बसेरा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 21 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन परिवारों तक वास भूमि का अधिकार पहुंचाना और भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इसके तहत योग्य श्रेणी के उन वंचित सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही सरकारी भूमि जैसे गैर मजरुआ, खास और आम भूमि पर बसे पात्र परिवारों की जांच कर उन्हें भी योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी प्रखंडों में 16, 17 और 18 जून को प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक योजना के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचे ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्र प्राप्त किया जा सके। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों को आज शपथ दिलाई गई। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुरबारी बहुअरा स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने हथियार के बल पर 25 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी और मरकजी वजीर बराए छोटी और वस्त सनत जीतनराम मांझी ने आज मुश्तरका तौर पर गया जिला के खिजर सराय में टेक्नोलॉजी सेंटर का संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम में असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार, रियासती हुकूमत के वजीर विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन और श्रीयसी सिंह समेत कई मौजूद लोग मौजूद थे। 170 करोड़ रुपए के तखमीना से बनने वाले इस टेक्नोलॉजी सेंटर से सालाना तकरीबन 7,000 नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। ये सेंटर जनरल इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल एग्जामिन सेंटर्स पर मरकूज होगा। वजीर आला सम्राट चौधरी आज रियासत में माही तजारत को फ़रोग देने से मुंसलिक दो अहम मंसूबों की शुरुआत करेंगे। वजीर आला पटना के मीठापुर वाक़े मत्स्य विकास भवन में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के रीजनल दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इस दफ्तर में रियासत माही पैदावार, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के शोबे में रफ्तार मिलेगी। वहीं वजीर आला आज ही भोजपुर जिला के वानासूर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का संगे बुनियाद रखेंगे। इस पार्क में रियासत के जदीद माही परवरी तकनीक की नुमाइश भी की जाएगी। महकमा महसूलात व इस्लाहात एराजी ने आज अभियान बसेरा के दूसरे मरहला की शुरुआत की है। 21 जून तक चलने वाली इस मुहिम का मकसद रियासत के बेज़मीन ख़ानदान तक रिहायशी ज़मीन का हक पहुंचाना और बेज़मीन ख़ानदान को बंदोबस्ती सर्टिफिकेट जारी करना है। इसके तहत अहल ज़ुमरे के उन महरूम सर्वेशुदा ख़ानदानों को बंदोबस्ती सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुआ है। साथ ही सरकारी ज़मीन जैसे गैर मजरूआ, ख़ास और आम ज़मीन पर बसे अहल ख़ानदान की जाँच करके उन्हें मनसूबा का फ़ायदा यकीनी दिया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से अवामी फलाही मंसूबों का फ़ायदा आखिरी शख्स तक पहुंचाने के मकसद से रियासत के सभी ब्लॉकों में 16, 17 और 18 जून को ब्लॉक सहयोग सह जन कल्याण कैंप का इनाकाद किया जाएगा। कैंप में मरकजी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन, EKYC और फ़ायदा पहुँचाने की सहूलत एक ही मकाम पर दस्तयाब कराई जाएगी। हर मंसूबा के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे और मुतालिका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद रहेंगे। मुस्तफीजों से अपील की गई है कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और दीगर ज़रूरी दस्तावेज साथ लेकर कैंप में पहुँचें ताकि मंसूबों का फ़ायदा फ़ौरन हासिल किया जा सके। पटना हाई कोर्ट के 7 जजों को आज हलफ दिलाया गया। पटना हाई कोर्ट के शताब्दी हॉल में मुनाकिद प्रोग्राम में चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने सभी 9 तकरूर जजों को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस रंजन कुमार झा, जस्टिस कुमार मनीष और जस्टिस राजकुमार ने मुस्तकिल जजों की हैसियत से, जबकि जस्टिस राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार को इजाफी जस्टिस की हैसियत से हलफ दिलाया गया। 7 जजों की तकरीरी के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के शुमाल मशरक, शुमाल वस्त, जनूब मशरक खित्तों में ज़्यादातर मकाम पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने कहा है कि रियासत के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क बना रहेगा। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत के साथ शेखपुरा रियासत का गर्म तरीन मकाम रहा। राजधानी पटना का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37.7 डिग्री

0: सेल्सियस दर्ज किया गया। कैमूर जिला के मोहनिया थाना हलका के तहत लहुरबारी बहु आरा वाके एक जेवरात की दुकान से जराइम पेशा अफराद ने असलाह की जद पर 25 लाख रुपए कीमत के जेवरात लूट लिए। शिवहर जिला के तरियानी थाना हलका से पुलिस ने एक नौजवान को देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिला के राजपुर थाना हलका में गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। इसके साथ ही इलाके आई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपको
2: लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में रूबरू।
3: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाश

0: दिल्ली से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त

0: राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
5: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राज संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की

0: भावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। इस श्रृंखला की आइए सुनते हैं 14वीं कड़ी।
2: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार,
3: बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
4: धन्यवाद।
3: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
4: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
3: जी।
4: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
3: जी।
4: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
3: जी।
4: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अ स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई
3: जी,
4: में
3: जी,
4: तो हमारे युवा लगभग 30-40-50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
3: जी,
4: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
3: जी,
4: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी दो ही दिन पहले की बात है। तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़ करके 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
3: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
4: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए, हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 है, इस तरह से
3: उसकी मात्रा भी सर कम है,
4: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
3: जी।
4: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
3: जी,
4: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया, और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने
3: इसकी प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
4: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
3: जी।
4: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का, एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा आरडीआई फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है
3: जी।
4: बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
3: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
4: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमेरिका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
3: जी।
4: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
3: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
4: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
3: जी।
4: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वैन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
3: जी।
4: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
3: जी।
4: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जो पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सारी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
3: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर और

0: बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए?
1: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान शोध टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
0: सर, ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
1: निश्चय, अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टुवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउसहोल्ड, एवरी इंडियन हाउसहोल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं, और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक, और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए हैं उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
0: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें?
1: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
0: जी,
1: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं और साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहां मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
0: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
1: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है। इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
0: जी,
1: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है। 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा, वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
0: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
1: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
0: जी।
1: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा। अगर हम उसको तराश सके, हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर, जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप News on EIR और यूट्यूब चैनल News on EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office, it marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
1: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
1: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with say something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
4: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true, because now almost every PIN code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So that tells you how big the footprint has become. Based on all these examples that we discussed, what is your sense about how India has grown capacity of the state or the administrative capacity?
1: Yeah, so obviously when people look at state, they tend to think of the elite services. And I think that's fine. But really what we need to look at, in my mind, is the people at mid-level and lower levels in state capacity. So if we take something like education, it has the largest base of government employees because school system is very large. We have 10.5 lakh government schools. And the reason why it's harder than, say, doing rural roads or rural electricity, at the front line, we have almost 60 lakh government school teachers. And nothing will really change in terms of outcomes unless the classroom transaction changes. So I think the hard part of this soft infrastructure is that you have to work through people. And we don't recruit that many more teachers anymore because we have achieved a fairly good pupil-teacher ratio. With our demographics now, you know, yes, we are growing a little bit in secondary school as enrollment increases. But in primary school, actually, enrollment peaked a while back. It's actually declining now as the number of births has come down over the last few years. So I think we will have to do whatever we would do with the current stock of people. The churn rate is only about 3-4%. So it's not like you can get a new breed of people. With the current set of people, how do we achieve better outcomes? That is the challenge. And I think that's a slow process. So unlike building a road, which can happen faster, I think we have to realize that this is a slow moving indicator. It'll take 10 years, 15 years to achieve the outcomes. But with a mission like Nipun Bharat, I have seen that this has already started to lead to changes on the ground.
5: in terms of teachers realizing the importance of foundational learning, teachers starting to use daily lesson plans, teachers starting to do a weekly formative assessment, teachers starting to identify the bottom half of children and see what remediation can be done to help them improve, teachers understanding the goals very clearly. I think these are big changes we have seen in the last 5 years. But even as we rolled them out in states like Uttar Pradesh, we did a great job. You found even after 5 years, there's only about 60-70% compliance because not every teacher will come on board. You know, it's a bell curve. You get the early adopters, then the others do it, then some don't. So it's hard work and you have to be patient. And so I'm very glad that government now is looking at Nipun Bharat 2.0. Because government has realized that, you know, in 5 years, it's not like we're going to solve the problem. It'll need 15 years of hard work to actually make this happen at scale. So because human beings are involved at the last mile, education, health, livelihood, these are much more complicated than the hard infrastructure.
4: In fact, your foundation has worked very closely on this Nipun policy. So tell me, based on that experience, is this replicable across the country? Uttar Pradesh is the first test case for this.
5: Yes. So actually in Uttar Pradesh, when we went meet the Chief Minister, he immediately said Bunyadi Shiksha is important. They already had something called Kayakalp, which was to improve the school infrastructure. So they were doing a good job. But then they started something called Mission Prerna. And this is pre-COVID. And Chief Minister himself agreed to certain goals, very clear goals on oral reading fluency. Children need to read 35 words per minute in class 2 and 60 words per minute in class 3. Very clear goal was communicated to all teachers. Chief Minister took this document and made him line up all the officials. And unhone kaha ki hum shapath lete hain ki, you know, we will achieve these goals. So he got the whole system aligned, put a very good officer for Mission Prerna, who was there for 4 years, so there was stability. And, you know, they have seen dramatic improvement. If you look at Parakh, which is government runs National Achievement Survey, or you look at even ASAR, which is a third-party survey, Uttar Pradesh is the most improved state and at very large scale. So they started earlier. Then Madhya Pradesh launched Mission Ankur, Haryana launched, and then after NEP, the Honorable Prime Minister decided to make it a national mission and launched Nipun Bharat. We then started to support 11 states with this mission. And as I said, we've seen the change is gradual, but we have seen real change on the ground with Nipun Bharat and the improvement. Our foundational literacy was so bad, you know, if you look at it 6 years ago. World Bank publishes this learning poverty report in terms of percentage of children at the end of class 5 who can't read class 3 text. And basically, if you've missed the bus, you missed it permanent. Because the curriculum by then assumes that you have to read. So 55%. And sub-Saharan Africa is much worse. But if you looked at countries like China, they were at 15%. Developed world is in single digits. So India has a long journey. And normally countries are improving at the rate of 0.7 percentage points per year. So if India had to follow the normal trajectory, even in a decade, we would get from 55 to 48% of children. I think because we started Nipun Bharat, we are attempting to bend the curve. It's called bending the Preston curve. And I think we can do it much faster. I believe we'll go from 55 down to 25. It may take 15 years, but it'll be much faster than any other country has done it before.
4: The final thought that based on the last 12 years, based on your own experiences, very short response as to how do you, is the cup half full or half empty?
5: I'm in the half full camp. I think that we are poised to do great things as a country, both economically and also on the development side. I can tell you that when I travel across the world, I mean, some countries already have done a much better job. They started earlier, like China on human development has, and economically also they did better. Vietnam, I think, really prioritized human development early on, much before India did. So we may have started doing it more recently, but they have been doing it for 30, 40, 50 years. I think the communist system brought this focus on basic health, basic education very early on. So I think that we've started on the journey. As I said, the hard infrastructure part, we have the formula. On the soft infrastructure part, we are developing the formula and we need the patience. I think with slow moving indicators, nobody has taken an education system from poor to fair to good to great and lagaud a chalang and done it even in one decade. It's a journey, even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good.

0: ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बांग्ला गान, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा अंतराल।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं बांग्ला गान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखिया पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: आप सुन रहे थे बांग्ला गान, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और शाम 5 बजे से इन्हीं मीटरों पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।
1: पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
2: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
3: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
2: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
3: जी।
2: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
3: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: हाँ,
0: है ना?
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, 8 गुना होके मिलता है, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल, लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप
1: बिल्कुल
0: जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
0: या
1: उनकी।
0: फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं, अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ काम का
0: काम कर रहे हैं।
1: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है, कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है, कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: अब क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते
1: हैं। सुनते हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे, पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नैनी,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी, जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत जरूरी
0: है। बिंदु है जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है, तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह है, और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल। एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी
1: खाने
0: गर्मी
1: का
0: में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाईयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाईयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना वो कड़क
1: रहती है। है जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: सखी सहेली, सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है।

0: गाना शारदा जी, वाकई आपने बहुत अच्छा संभाया। जो मधुबन खुशबू देता है, यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से, शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको की स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है।
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्य उदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है। तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल

0: टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए। या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कड़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते, जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना हो,
1: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
0: और कहा भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो हम चाहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी, जी।
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की, मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिक्रिएशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी, पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक का,
1: किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते
0: बिल्कुल।
1: हैं। पर यदि आप एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं, तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना ना समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिन

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिख

0: शक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर।
1: डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित नहीं करेंगी।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
0: जी हाँ, बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए।
0: देखिए, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी

0: व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
0: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
1: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
0: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
1: उठे सबके

शारदा जी गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं।

0: आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में है, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं
0: जी।
1: कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
0: और फिर तो से अपना काम करना,
1: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा। काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
1: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
0: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं ऑफिस में काम करते करते भी, कोई टिप्स मिल गया बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
1: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए। आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
0: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
1: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं, जो

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अच्छा यह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: मिडवेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी और आप सभी का इस प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, युवावस्था नई सोच, नई ऊर्जा और नए अवसरों का प्रतीक है। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ हम लेकर आए हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें होंगे ज्ञान, जागरूकता, रचनात्मकता और मनोरंजन के रंग। आज की हमारी चर्चा का विषय है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इसके बाद होगा हमारा डेली ट्रिविया सेगमेंट। श्रोताओं, इसके बाद प्रस्तुत होगा हमारा साप्ताहिक रचनात्मक मंच सृजन, जिसमें आप सुनेंगे एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी। सृजन के बाद होगी रोजगार सूचना, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। कार्यक्रम में आगे जानेंगे आकाशवाणी से जुड़ा एक फन फैक्ट और समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स, जिससे आप देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहेंगे। और मनोरंजन के बिना युववाणी का सफर अधूरा है, इसलिए कार्यक्रम के दौरान सुनेंगे आपके पसंदीदा बॉलीवुड गीत, जो आपके मन को तरोताजा कर देंगे। तो श्रोताओं, ज्ञान, जागरूकता, रचनात्मकता, रोजगार और संगीत से भरपूर इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पुनः स्वागत है मित्रों आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। विषय है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। प्रतिवर्ष यह दिन 15 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मानजनक जीवन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता दी है। वृद्ध दुर्व्यवहार कई रूपों में देखने को मिलता है, जैसे शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, भावनात्मक उपेक्षा तथा आवश्यक देखभाल से वंचित करना। बढ़ती उम्र के साथ कई बुजुर्ग अपने परिवार या समाज पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे वे शोषण और उपेक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। उनके अनुभव, ज्ञान और जीवन मूल्यों से नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए उनका सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और उन्हें सुरक्षित तथा स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज के समय में परिवारों, समुदायों और संस्थाओं को मिलकर वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार, नियमित संवाद और सामाजिक सहभागिता उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि एक सभ्य और संवेदनशील समाज वही है जहां बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और स्नेह प्राप्त हो। श्रोता बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर चर्चा। चर्चा के बाद बारी है आज के डेली ट्रिविया की। प्रश्न सुन लीजिए, आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका उत्तर आप सोचिए, हम कार्यक्रम में आगे सही उत्तर बताएंगे। श्रोताओं, इसके बाद प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक खंड सृजन। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। कहानीकार है प्रिया कुमारी।
5: आज फेकू बाबू के घर की चहल पहल देखते ही बनती थी। सबके चेहरे खिले हुए, सभी भोज की तैयारी में व्यस्त। सबके चलने फिरने के अंदाज से लग रहा था कि काफी लंबे अरसे बाद इस घर की खुशियां लौटी थी। सच्चाई भी यही थी। फेकू बाबू के दो लड़के थे, मदन और सुशील। दोनों ही काफी विनम्र स्वभाव के थे। मदन ने हिंदी से और सुशील ने अंग्रेजी से MA किया था। BEd करने के बाद दोनों पास के शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षक थे। दोनों प्रतिदिन घर से ही स्कूल अपनी मोटरसाइकिल से आते जाते थे। मदन को दो लड़कियां तथा सुशील को दो लड़के थे। दोनों भाइयों में काफ़ी मेल था। दोनों की पत्नियां भी एक सुगृहिणी की भांति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही थी। फेकू बाबू की इकलौती लड़की की शादी भरतपुर गांव के विलासदेव बाबू के पुत्र रमेश कुमार से हुई थी। बेटी की गृहस्थी से ही फेकू बाबू काफ़ी दुखी रहा करते थे। वैसे तो विलासदेव बाबू को धन संपत्ति की कमी नहीं थी। लगभग 60 एकड़ जमीन थी उनके पास और रमेश उनका इकलौता पुत्र था। यही देखकर फेकू बाबू ने अपनी पुत्री की शादी रमेश कुमार के साथ कर दी। उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या, इतनी जमीन है कि आराम से खाना पीना चल जाएगा और उनकी बेटी को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। फेकू बाबू की पुत्री रश्मि BA पास थी, जबकि रमेश कुमार मैट्रिक पास। यहाँ भी फेकू बाबू ने समझौता कर लिया। धूमधाम से उन्होंने रश्मि की शादी रमेश के साथ कर दी। उन्होंने सोचा कि इतनी जमीन है तो कम से कम बेटी को भोजन की कमी नहीं होगी। फेकू बाबू यहीं पर निर्णय लेने में चूक गए। शादी के बाद से ही रश्मि के पति रमेश की असलियत सामने आने लगी।

0: आवारा युवकों के साथ उसका उठना बैठना था। कोई काम धंधा तो करता नहीं था, बस दिन भर दोस्तों के साथ शराब की चौकड़ी जमती थी। उसे जुआ खेलने की भी लत थी। हालांकि रमेश के पिता विलासदेव बाबू उसे खूब समझाते थे, लेकिन वह मानता ही नहीं था। इसी चिंता में वे बीमार पड़ गए। रमेश ने उनका इलाज उचित ढंग से नहीं कराया, फलतः कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। इसके बाद तो रमेश और अधिक स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे उसने जमीन बेचना शुरू कर दिया। रश्मि यदि मना करती तो वह उससे उसके साथ भी मारपीट करने लगता। इसी बीच रश्मि को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रश्मि को इस बात की खुशी तो हुई, लेकिन पति के बढ़ते अत्याचार से वह तंग आ चुकी थी। उसका कष्ट जब और अधिक बढ़ गया, तब उसने अपने पिता फेकू बाबू को इसकी सूचना दी। फेकू बाबू की चिंता और अधिक बढ़ गई। एक बार तो उसके मन में हुआ कि बेटी को अपने यहाँ मंगवा ले, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इससे बात और बिगड़ सकती है। उनका सोचना भी बिल्कुल सही था। बेटी को वे अपने यहाँ कितने दिनों तक रख सकते थे, इसलिए उन्होंने रश्मि को परिस्थिति से समझौता करके अपनी ससुराल में ही रहने को कहा। पिता की बात को मानकर रश्मि ससुराल में ही हर कष्ट को झेलते हुए दिन काटने लगी। लेकिन एक दिन तो ऐसा हो गया कि कोई संभ्रांत महिला यह बर्दाश्त नहीं करती। उस दिन रमेश के घर में ही शराब की चौकड़ी जम गई। कुछ ही देर में रमेश नशे में बेसुध हो गया। इसके बाद उसके दोस्तों ने रश्मि को देखकर गंदी गंदी फप्तियां कसना शुरू कर दी। यह तो रश्मि की पीड़ा की चरम सीमा थी। किसी तरह उसने रात काटी। सुबह में उसने अपने बच्चे को गोद लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ी। बस से वह अपने पिता के पास पहुंच गई। अचानक रश्मि को आया देख फेकू बाबू और रश्मि के दोनों भाई मदन और सुशील भी आशंकित हो गए। पिता और भाइयों को देख रश्मि फपक कर रो पड़ी। फेकू बाबू ने अनुमान लगा लिया कि जब तक कोई बड़ी बात नहीं हुई होगी, तब तक वह ससुराल से अकेले आ नहीं सकती। रश्मि ने अपनी दोनों भाभियों को पूरी कहानी बता दी। सभी लोगों को काफी दुख हुआ। अगले ही दिन रश्मि के पति सुरेश आ धमका। वह शराब के नशे में था। आते ही उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया और रश्मि को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा। सामने में बहन के साथ बदसुलूकी देख मदन और सुशील चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक सके और धक्के मारकर रमेश को घर से भगा दिया। गुस्से से तिलमिलाता हुआ रमेश यह धमकी देकर गया कि वह रश्मि को अब कभी भी लेने नहीं आएगा और दूसरी शादी कर लेगा। यह दृश्य देखकर फेकू बाबू ने अनुमान लगा लिया कि ससुराल में रश्मि किस तरह की जिंदगी जी रही होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अपने पिता के घर रश्मि भी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उसकी दोनों भाभियाँ उसे बहुत मानती थी। भाभियों से इतना स्नेह पाकर रश्मि को कभी अपनी माँ की कमी नहीं खटकी। उसकी माँ का निधन 4 वर्ष पहले ही हो चुका था। उधर रमेश अपने घर में और अधिक मटर गस्ती करने लगा। गांव के कुछ लोगों की नजरें उसकी जमीन पर थी। वही लोग उसको बहका कर उसकी जमीन खरीदते जा रहे थे। अब उसके पास मात्र 10 बीघा जमीन बच गई थी। इसी बीच एक दिन रमेश को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। पड़ोस के एक व्यक्ति ने उसे डॉक्टर के यहाँ पहुँचाया। हर तरह की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि शराब के अधिक सेवन से उसके पेट में अल्सर हो गया है। यदि शीघ्र उचित और नियमित इलाज नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। यह सुनकर रमेश के होश उड़ गए। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। कुछ दवाइयां लेकर वह घर आ गया। अब तो उसके दोस्त भी उससे किनारा करने लगे थे। अब उसके पास कोई नहीं आता था। रमेश को यह आभास हो गया कि जब तक ससुराल वाले उसकी मदद नहीं करेंगे, तब तक वह ठीक नहीं हो सकेगा। अपने घर में ताला लगाकर उसने ससुराल के लिए बस पकड़ ली। रास्ते में उसे अपने और पराये का बोध हो रहा था। ससुराल पहुँचते ही उसने अपने ससुर फेकू बाबू को के पैर पकड़ लिए। रोते हुए उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। मदन और सुशील ने उसे उठाया और डॉक्टर द्वारा लिखी दवाइयों और निर्देशों को पढ़कर उन लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझा। दोनों भाइयों ने उससे कहा कि वे लोग उसका इलाज तभी कराएंगे जब वह शराब को हाथ नहीं लगाने की कसम खाएगा। आंखों में आंसू भरकर रमेश ने कभी भी शराब नहीं पीने की कसम खाई। दोनों भाइयों ने रमेश का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में इलाज का अच्छा असर दिखने लगा। धीरे धीरे रमेश पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसने अपने ससुर फेकू बाबू से निवेदन किया कि यहीं पर कोई काम दिलवा दीजिए। फेकू बाबू ने मदन और सुशील को यह बात बताई। दोनों भाइयों ने शहर के एक कपड़ा मिल में उसे काम पर लगवा दिया। अपनी जमीन को उसने बटाईदारों के हाथों में दे दिया। एक दिन जब वह काम पर से ससुराल आया तो उसके साले की पत्नियों ने बताया कि कल उसके बेटे का जन्मदिन है। रमेश तो यह बात पूरी तरह से भूल ही चुका था। रमेश अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था। उसी की चहल पहल उस दिन फेकू बाबू के घर दिख रही थी। शाम को रश्मि के 4 वर्षीय बेटे ने केक काटा और अपने नाना मामा मामी माता पिता सबके मुंह में दिया। सभी लोगों ने तालियां बजाकर उसे हैप्पी बर्थडे टू यू कहा। इस तरह रश्मि की गृहस्थी में फिर से बाहर आ गई।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: साथियों, अभी आप सुन रहे थे सृजन कहानी। कहानीकार थी प्रिया कुमारी। अब समय है कार्यक्रम में थोड़े मनोरंजन का। आइए सुनते हैं फिल्म सुल्तान का यह गीत मीका सिंह की आवाज़ में।

0: साथियों रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: बारी है अब रोजगार सूचना की। कर्मचारी चयन आयोग अर्थात SSC ने CGL 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के अंतर्गत लगभग 12,256 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक स्नातक अभ्यर्थी 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। रोजगार सूचना में इतना ही, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले खंड फन फैक्ट की ओर। मित्रों, आपको पता है आकाशवाणी शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ने किया था, जिसे बाद में भारतीय रेडियो प्रसारण की पहचान के रूप में अपनाया गया। अब डेली ट्रिविया का भी उत्तर जान लेते हैं। हमने प्रश्न किया था, आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑल इंडिया रेडियो। कार्यक्रम में आगे जानते हैं अब आज के समसामयिक खबरों को। दिनेश त्रिवेदी को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन मिलाप गुजरात पुलिस द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत बिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हैदराबाद में किया। आज के समसामयिक खबरों में इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ ये खबरें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। इसी के साथ हमारा आज का युवाणी अंतिम पड़ाव पर पहुँच गया है। आइए समापन से पहले सुनते हैं फिल्म हम पटी शर्मा की दुल्हनिया का यह गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

प्यारे श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं शालिनी आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार, शुभ संध्या, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर।

युवावाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म अनाड़ी से लिया है। उदित नारायण एवं साधना सरगम ने इसे गाया है। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत तैयार किया है आनंद मिलिंद ने।

जी एवं साथियों को अब आइए सुनते हैं फिल्म अंदाज अपना अपना में। गीत के बोल राजकुमार संतोषी ने लिखे हैं और संगीत तैयार किया है विनय कुमार सिन्हा ने।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगला गाना फिल्म बाजीगर से है। गीत के बोल गौहर कानपुरी के हैं, संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने और युगल आवाज़ें विनोद राठौर एवं अलका याज्ञिक की है।

0: सकते हैं। कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम के अंत में यह है फिल्म छुपा रुस्तम का गीत, जिसे गाया है अलका याज्ञिक एवं साथियों ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत तैयार किया है आनंद मिलिंद ने।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया। अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की कुछ संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम हो लोक गीतों के कार्यक्रम में आज गायिका होंगे इंद्राणी सिन्हा। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज गायक कलाकार होंगे राकेश कुमार। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 8:15 पर खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे खेल खिलाड़ी। रात्रि 9:30 कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित निखिल विनय का सितार वादन राग चंद्रकौश में। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजेश प्रसाद यादव की वार्ता, विषय होगा तनाव और योग। 6:40 पर रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार होंगे गोपाल कृष्ण मिश्र। 7:20 पर कार्यक्रम स्मृति संवाद में अपने बीते दिनों की स्मृतियां हमसे साझा करेंगे योगेश्वर झा। आपसे बातचीत करेंगे कुसुमाकर दुबे। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप हमारा साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम सुनेंगे बज़्मे उर्दू। 10:30 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में गायिका होंगी संगीता कुमारी। 11 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं गुलदस्ता। 12 बजे महिला श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होता है नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग। दिन के 1 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कल गायिका होंगी नूतन कुमारी। 1:30 आप सुनेंगे धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक होंगे रमेश रमन एवं प्रस्तुतकर्ता दासमती चातर। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3 बजे तरंग कार्यक्रम में फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह। 3:20 पर आप हर रोज सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। 6:00 आप सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। 7:10 पर कल हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे विनय कुमार मिश्र की वार्ता, विषय होगा जैविक खेती की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में इसकी संभावना है। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका होंगी शर्मिला गुप्ता। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 आप सुनेंगे नाटक फैसला। रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक गीतों पर आधारित आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे गूंजे बिहार, और रात 10:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे भावों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, 6:00 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शंकर का नमस्कार
1: और सबों को कमली का भी नमस्कार। शंकर भाई आपको भी मेरा हार्दिक नमस्कार।
0: नमस्कार कमली बहन, कहिए कैसी हैं आप? सब कुशल मंगल तो है ना?
1: जी जी जी बिल्कुल कुशल मंगल हूँ। और आप बताइए कैसा हाल समाचार है?
0: मेरा भी सब ठीक ठाक चल रहा है कमली बहन।
1: हाँ हाँ, लेकिन ये जो जेठ माह की चिलचिलाती धूप है और उमस भरी गर्मी है, सब कोई हैरान परेशान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। और दोपहर में भी देखिए आज जो है गर्मी अपने चरम पर थी। और ऐसे में जो है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या छोटे बाल बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ी परेशानियां होती है, लेकिन हम लोग तो शंकर भाई किसान भाई बहन है, हम लोगों का तो जीवन ही जो है संघर्ष में बीतता है। और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मौसम जो है जैसा भी हो, हमारी जो है परेशानियां जो है वो अपनी जगह है, लेकिन खेती गृहस्थी
0: काम करते
1: अच्छी
0: रहना
1: होनी
0: भाई।
1: चाहिए।
0: बिल्कुल कमली बहन, आपने सही बात कही। हमारे किसान भाई ऐसे समय में ही धान की खेती के लिए अपने खेतों में जैविक खादों का छिड़काव और बिचड़ा बोने का काम करते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन बात यह भी सच है कमली बहन की जब जेठ की धूप से मिट्टी तपती और पकती है तो हमारे खेतों की मिट्टी उपजाऊ बनती है।
1: हाँ,
0: इसलिए तो हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ा तपस्वी माना गया है।
1: हाँ,
0: सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, वो अपने कर्तव्यों को कठिनाइयों का सामना करते हुए भी पूरा करके ही दम लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग किसान भाई बहन जो है किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए मौसम बाधाएं नहीं बनती हैं, हम उस बाधाओं को पार करके और हम जो है अन्न जो अन्नपूर्णा है उसको हम लोग सबकी थाली तक पहुंचाने का प्रयास किया करते हैं।
0: इसलिए तो, और जहां तक बात है कि ऐसे मौसम में घर के बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल की बात आपने कही कमली बहन, तो आज 15 जून है
1: जी,
0: और आज के दिन हम लोग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हमारे जीवन की वो सीढ़ी है जिनकी अंगुली पकड़कर कंधों पर बैठकर उनसे कई जीवनोपयोगी बातें सुनकर सीखकर हम अपने जीवन को आसान बना पाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी बुजुर्ग जो होते हैं ना, हम उनकी छांव में, हम उनके संरक्षण में पल बढ़कर बड़े होते हैं और चीजों को समझने और देखने के लायक बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उनकी नैतिक शिक्षा और शिक्षाओं के हम लोग दम पर हम लोग जो है मनुष्य बनते हैं।
0: लेकिन बात यहाँ तक आप पहुंची है कमली बहन,
1: हाँ,
0: कि आज उन्हीं बुजुर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य थोड़ा धूमिल पड़ने लगा
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: इसलिए आज के दिन को बुजुर्गों के प्रति समर्पित कर जागरूकता फैलाने की नौबत आई,
1: जी,
0: जिसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक मानसिक या आर्थिक दुर्व्यवहार कहें एवं उपेक्षा के बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाना और फैलाना है।
1: जी, बहुत बार हम लोग देखते हैं ऐसा शंकर भाई कि हम बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो घर में उपेक्षित से नजर आते हैं और लोग जो है उनको एक बोझ की तरह मानने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ये बहुत बकबक करते हैं, ये हम लोगों को बात बात पे टोका टोकी करते हैं और ये पुरानी बातें किया करते हैं। तो हमें शंकर भाई ये कहीं ना कहीं देखना है कि आज जिनको हम तिरस्कार कर रहे हैं, जिनका हम तिरस्कार कर रहे हैं, वो उन लोगों के पास भी एक अनुभव की बड़ी पूंजी है।
0: बिल्कुल,
1: और अगर वो हम उन्हें सही सम्मान दें और उनकी बातों को अपने जीवन में हम लोग भी शामिल करें तो उनकी बातें हो सकती है थोड़ी कड़वी हो, लेकिन वो हमारा हित की सोचते हैं।
0: सच्चाई ये कमली बहन कि आज हम लोग जवान हैं, ये भूल जाते हैं कि वो हमारे बुजुर्ग जो आज बूढ़े होके खांस रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, कल वो भी जवान हुआ करते
1: जी,
0: थे।
1: जी जी जी जी जी
0: और उन्हीं की जवानी की बदौलत हम आज आए हैं इस दुनिया में।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये सही
0: और
1: बात है।
0: उन्होंने ही इतना कुछ मेरे लिए कर दिया है, उसको हम अपना चीज समझ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जबकि तो उन्होंने कमाया है अपनी मेहनत से।
1: कितनी अच्छी बात आपने कही कि देखिए एक चक्र है, जीवन चक्र है, कि जैसे मनुष्य जो जन्म लेता है और वो शैशवावस्था किशोरावस्था पार करके जवाना युवावस्था में आता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की तरफ जाता है, ये एक चक्र है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जो निसक्त हैं या उम्र के कारण हो गए हैं, तो कभी हम भी इस अवस्था में आएंगे और कुछ जो परेशानियां वो झेल रहे हैं हमें भी हो सकता है झेलनी पड़े।
0: इस बातों को और गहराई से हम लेते हैं कमली बहन, अपने श्रोताओं को ये बताते हैं कि WHO के अनुसार दुनिया भर में 6 में से 1 बुजुर्ग दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं और भारत में हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 50% से ज्यादा बुजुर्गों के को अपने लोगों ने ही प्रताड़ित किया है और कर रहे हैं
1: जी जी जी,
0: और उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।
1: अक्सर हम देखते भी हैं ऐसा शंकर भाई, और हम लोग जो है उसको एक तरह से मौन स्वीकृति दे देते हैं, हमारे आसपास में अक्सर ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, लेकिन मौन स्वीकृति मत लीजिए।
1: हाँ जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसी बातें, कि अगर हमारे आसपास में जो भी बुजुर्ग हैं

0: जी शंकर भाई, आज सोमवती अमावस्या थी और स्नान दान और दान के लिए जो अमावस्या है बहुत पावन मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। और साथ ही आज मल मास जो है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसका भी समापन हो गया। और आप देखें कि ये जो अधिक मास है या मल मास है, ये मास सभी मासों में ऐसे उत्तम माना गया है। और माना गया है कि इस मास में जो ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो किसी जरूरतमंद के पास जाएं, तो वो भी उनका उपयोग कर सके। और इसीलिए हमारी संस्कृति में दान के महत्व को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। और इसे सभी, ऐसे कहा जाए तो धर्मों में दान के महत्व को बहुत ज्यादा माना गया है।
1: लोग इस बारे में जानते नहीं है, बोलते हैं कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि ये मास जो होता है, ये वस्तुतः सिर्फ सिर्फ हरि के लिए
0: जी
1: है। हरि की पूजा करते रहें और कुछ भी ना करें
0: जी। और साथ ही साथ अपने जितने हैं आपके पास है, जो भी कहते हैं कि जिस पर जो भी चीजें बनी हैं, उस पर सिर्फ आपका ही नहीं हक है, सभी लोगों का हक है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो ये हमारी संस्कृति है, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लीजर ऑफ गिविंग, यानी देने में जो आपको सुख मिलता है उसको संग्रह करने में या उपभोग करने में नहीं मिलता है। तो
1: और कल से समय बदल रहा है, अब उछल कूद चालू, ब्याह शादी होने वाला है भाई
0: जी जी,
1: अब लगन चालू है कल से
0: जी जी जी जी,
1: अब भोज खाना है।
0: हाँ हाँ, लेकिन पहले हम लोग अभी बातें कर रहे थे बुजुर्गों के प्रति हमारा जो दुर्व्यवहार है उससे सचेत होने के बारे में। तो क्यों ना शंकर भाई, इस महत्वपूर्ण विषय पर एक वार्ता के जरिए हम थोड़ा विस्तार से जानते।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए हम सुनते हैं।
1: बुजुर्गों के प्रति हमारा दायित्व,
2: बुजुर्गों के प्रति हमारा दायित्व। बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इनके सम्मान सुरक्षा से हम आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मशांति के साथ साथ अपने कर्तव्य पालन की अनुभूति होगी। बुजुर्गों की सेवा सुरक्षा और इनकी लंबी आयु की कामना करना हमारी संस्कृति है, कर्तव्यपरायणता है, कोई परंपरा नहीं। प्राचीन काल में बुजुर्गों की सेवा सुरक्षा, खान पान और रख रखाव पर परिवार तत्पर रहते थे। इनके आशीर्वाद से लोग सुखी रहते थे, लोग इनके साथ मधुरता का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि इनकी आत्मा में परिवार के प्रति शांति और सद्भाव बना रहता था। लेकिन बदलते समय के साथ बुजुर्गों की सेवा में गिरावट आ गई है। विश्व स्तर पर वृद्धों की स्थिति का आकलन करने वाले आंकड़ों के आधार पर भारत में वृद्धों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। परिवार एवं समाज में इनकी उपेक्षा एवं तिरस्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। परिवार के लोग बूढ़े एवं वृद्धाओं को बेकार एवं बेरोजगार समझकर इनका अपमान कर रहे हैं। एक बात मुझे समसामयिक याद आ रही है, बूढ़ों का कहना है, जिसको दी थी मैंने जुबान, वह हो गया आज जवान। कहते हैं मुंह पर लगाओ ताला, इसी में है तुम्हारा भला, बूढ़ा है घर का कूड़ा जैसे टोकरी का आम सड़ा। अभी भी बुजुर्ग समाज और परिवार की रीढ़ है। अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करने में अपने अनुभव की बातों से परिवार समाज को प्रेम और सद्भाव से परस्पर सामंजस्य स्थापित करते रहते हैं। अगर हम बुजुर्गों के कथनानुसार चलें तो एक उन्नत परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा।

बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज के अगर लंबी आयु तक जीवित रहते हैं तो हम उनसे अनुभव का लाभ ले सकते हैं। जिसने 80 वर्षों की ऋतुओं की अठखेलियाँ देखी है वही हमारा सही मार्गदर्शक बन सकता है। हमारे बुजुर्गों में यह शक्ति मौजूद है, इनके हर आयाम पर हमें ध्यान देना होगा, सभी क्रियाकलापों को भली भांति समझना होगा, तभी हम बुजुर्गों की सुरक्षा कर सकते हैं। एक उन्नत परिवार और समाज की कल्पना के लिए वृद्धों की सेवा शुश्रूषा अनिवार्य है। वृद्धों का अपमान हमारे लिए ग्लानि और पाप है। जिसने कल हमारे सारी कठिनाइयों कुछ से जूझते हुए हमें पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, वह आज अपमान का शिकार हो रहा है। यह हमारी जिंदगी के लिए धिक्कार है। बढ़ते वृद्धाश्रमों की संख्या इस कटु सत्य की ओर संकेत करती है। वृद्धा हमारे देवता स्वरूप हैं, इस कुव्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्ग अनुभव के पक्के श्रद्धा सम्मान के पात्र परिवार के बुजुर्ग मूल सदस्य एवं परिवार समाज की अमूल थाथी होते हैं। इनकी देखरेख हमारा पावन कर्तव्य और जरूरत हुई। आज जब संयुक्त परिवार विखंडित हो रहे हैं, परिवार का ताना बाना बिखर रहा है, ताना बाना एक स्ट्रक्चर है जो दोनों मिलकर नवीन एवं संगीन वस्तु का निर्माण करता। अगर आज बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज में अपमानित होते हैं तो सामाजिक ताना बाना नष्ट हो जाएगा। आज एकल परिवार का चलन जोरों पर है, बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे में परिवार में बुजुर्गों के महत्व को समझने की जरूरत है। यह सत्य है कि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर पूरी क्षमताओं के साथ काम करने में सक्षम नहीं रहता है और शरीर पर अशक्तता हावी होने लगती है। यह हर इंसान के लिए सत्य है कि सबको एक दिन बुढ़ापे की उस अवस्था से गुजरना पड़ता है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि इस अवश्यंभावी प्रक्रिया का सम्मान करें और बुजुर्गों को इस अवस्था का सामना करने में आवश्यक सहयोग देने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। बंधुओं, सभी युवाओं एवं प्रौढ़ों से मेरी अपील होगी कि इस वृद्धावस्था पर उपहास न करें और इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गरिमापूर्ण उपस्थिति देकर अपनी कर्तव्य पूरा करें। दादा दादी नाना नानी की भूमिका में इस आधार पर अपना विलक्षण योगदान दे सके हैं। आज की भागम भाग की जिंदगी में नौकरी पेशा करने वाले माता पिता के पास बच्चों के लिए अधिकतम समय नहीं होता है। ऐसे में बच्चों के विकास के लिए घर में बूढ़े बुजुर्गों की गोद एक उर्वर भूमि का काम करती है, जिसमें बचपन व खूबी पनप सकता है। बुजुर्ग अनुभव के पक्के चलते फिरते पुस्तकालय है। बुजुर्ग नई पीढ़ी के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बुजुर्गों का देखभाल बच्चों के भविष्य का देखभाल होगा। बुजुर्ग हमारे प्राणाधार होते हैं, इनका योगदान कर्तव्य और अनुभव नई पीढ़ी के लिए स्मरणीय, वंदनीय और चंदनीय है। इनके अच्छे स्वरूप स्वास्थ्य परिवार में खुशियाँ आती है, इसलिए बूढ़ों की सेवा ईश्वर की सेवा है। इनका आशीर्वाद पुष्पित और फलवित है। इस कठिन सामाजिक और पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा, तभी समाज में बुजुर्गों का सम्मान संभव है। श्रवण कुमार की पितृ भक्ति मातृभक्ति की सेवा कर जिस तरह श्रवण कुमार उरीन हो सकते हैं, उसी तरह हमें भी समाज में मातृ पितृ भक्ति कर उरीन होना चाहिए। कहा भी गया है, तीर्थ करत फल एक मिले, संत दरस फल चार, मात पिता सेवा करत मिले फल हजार। आज जो वृद्ध हैं, कल मेरे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी थे और हमारे प्रथम गुरु भी थे। इन लोगों की सेवा

0: मेरा धर्म कर्तव्य है, बुजुर्गों की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। ऐसे में बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है कि वे जीवन के अनुभवों से नई पीढ़ी को यथासंभव लाभ दें। बच्चों के साथ बिताने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकालें। बच्चों की शिक्षा से लेकर उनको संस्कार संपन्न बनाने में अपना आवश्यक योगदान दें। ऐसा करने में उन्हें गहरी संतुष्टि व शांति मिलेगी और साथ ही जीवन की आपाधापी में बच्चों के माता पिता के लिए भी वे एक बहुत बड़ा संबल साबित होंगे। परिवार और समाज के लिए उपयोगिता के आधार पर जो सम्मान और गौरव का भाव मिलता है उसके लिए बुजुर्ग सहज रूप से अधिकारी बनेंगे। आज यह वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध तथ्य है कि 8 वर्ष आयु वाले बच्चे का 80% बौद्धिक विकास हो जाता है। अतः जीवन के इस प्रारंभिक वर्षों में बुजुर्ग बच्चों के भविष्य जीवन में सशक्त योगदान देने में सहायक हो सकते हैं। घर में पढ़ाई लिखाई के साथ वे बच्चों के साथ बाहर घूमने का समय निकाल सकते हैं, बच्चों के ज्ञान वृद्धि में पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। समाज और परिवार में जब बूढ़े को सम्मान मिलेगा तो वे अपने जीवन की ढलती शाम को संतोषपूर्ण ढंग से बिता सकते हैं और नई पीढ़ी के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ वे थेपेड़ों के बीच टूटते बिखरते परिवार का प्रेम से जोड़ सकते हैं। इस तरह मैं निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि बुजुर्गों की सेवा से हमारा परिवार सुखी संपन्न रह सकता है और सामाजिक सम्मान बना रह सकता है। बूढ़ों का अपमान करने से समाज में हमें सम्मान नहीं मिल सकता है। बुजुर्गों का सम्मान देना, बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है।
1: जी, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
2: बिल्कुल,
1: और हमारा ये बिल्कुल दायित्व होना चाहिए कि हम बुजुर्गों को उनका सही सम्मान दे, उनको उनके संरक्षण में हम रहे, ऐसा न लगे कि हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, ऐसा लगे कि वो हमारी देखभाल कर रहे हैं, है ना।
2: तो वो कहावत है ना, कमली बहन की छाता यदि फट भी जाए तो भी बहुत राहत देता है वो बारिश से और धूप से।
1: जी बिल्कुल,
2: इसलिए भाई उसको फेंको मत।
1: हाँ हाँ, और उन्हें ऐसा ना लगे कि वो तिरस्कृत है, वे अनुपयोगी हैं, ऐसा भाव उनके मन में ना आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले शंकर भाई कुछ संदेशों को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुन लेते।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424। 42
6: 8700142 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700041 4242 पर।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कमली बहन, कुछ मौसम सूचना तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सुना दें।
1: हाँ हाँ, तो अगले 1-2 दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है और तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और साथ ही शंकर भाई, 11 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। तो अगले 1-2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून से भागलपुर और बिहार के शेष भागों में भी आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। और
2: हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सलाह भी है, मैं बता देता हूँ कि लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सवन, राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, ये सारी किस्में यदि आप किसान भाई अपने नर्सरी में लगाना चाहते हैं तो आप स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें और अपना नर्सरी तैयार करने का प्रयास करें। और इस मंथ में आप जिसको बिचड़ा हम लोग बोलते हैं, बिचड़ा बोने का काम पूरा कर लें तो अच्छा रहेगा।
1: जी, जी।
2: और कार्यक्रम में आगे चलते हैं कमली बन, हम लोग प्रायोजित कार्यक्रम का समय हो चला है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा संदेश सुन लेते हैं। तो चलिए, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं किसान भाइयों को
1: कि ये मूंग की तैयार फलियों की तुड़ियाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और अब आइए शंकर भाई, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
8: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज खोज कर ऐसे कोर्सेस को हम लाएंगे। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जम्मू।

0: बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर, ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूं, 1800 121 0051, 1800 121 0051, और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002, 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं, किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआ।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल, नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें, 9431899002, 9431899002, और 1800121 0051। डॉक्टर नीरज बताइए, हाँ हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को, बैचलर ऑफ

0: हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
1: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद,
0: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज पेपर में भी, हम लोग न्यूज में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन

औसत 18% ही है। देश में 55% श्रमिक कृषि से रोजगार पाते हैं, लेकिन बिहार में 3/4 से ज़्यादा श्रमिक रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है। बिहार की खेती कृषि छोटे जोत वालों की खेती है, क्योंकि 96% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है एवं करीब 67% जमीन इन्हीं लोगों के पास है। कृषि प्रौद्योगिकी के विकास के दौर में बिहार के लघु एवं सीमांत किसान पीछे छूट गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में करीब 90% जोत 1 हेक्टेयर से छोटे है। 1 एकड़ से छोटे जोतों की संख्या करीब 78% है। सीमांत किसान के पास करीब 43% कृषि योग्य जमीन है। कृषि योग्य जमीन को बढ़ाना संभव नहीं है, ये जोते दिन प्रतिदिन घट रही है। अब जरूरत है उसी जमीन से अधिक उत्पादन कर अधिक लाभ अर्जित किया जाए। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर लघु एवं सीमांत किसान अधिक उत्पादन, निरंतर लाभ एवं रोजगार का सृजन कर सकते हैं। किसान भाई, आइए जानते हैं कृषि प्रणाली क्या है। कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन, वानिकी इत्यादि का जब एक साथ इस प्रकार समायोजन किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक हो, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, तो इसे हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। चूँकि ये स्व संपोषित प्रणाली है, जिससे अवशेषों के चक्रीय तथा जल एवं पोषक तत्वों आदि के निरंतर प्रवाह पर आधारित है, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी, वही दूसरी ओर आमदनी एवं रोजगार का सृजन होगा। समेकित कृषि प्रणाली मुख्य 4 उद्देश्य से जाना जाता है। उच्चतर स्तर पर लगातार एवं स्थिर आय प्राप्त करने हेतु सभी पूरक उद्यमों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। दूसरी मुख्य उद्देश्य है प्रणाली की उत्पादकता में सुधार करना एवं कृषि परिस्थिति के संतुलन स्थापित करना, प्राकृतिक फसल प्रणाली प्रबंधन करना एवं कीट व्याधि तथा खरपतवार का नियंत्रण करना, रासायनिक खाद एवं अन्य रसायनों के उपयोग में कमी लाना एवं पर्यावरण प्रदूषण मुक्त तथा स्वस्थ उत्पादों को प्राप्त करना। समेकित कृषि प्रणाली के लाभ, प्रति इकाई स्थान एवं प्रति इकाई समय में फसल एवं इससे संबंधित उद्यमों के संगठनीकरण के कारण आर्थिक उपज में वृद्धि का

0: साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: और शंकर भाई, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दें सबों को, कमली का नमस्कार।
4: बिल्कुल आपने सही बात कही कमली बहन, समय हो चला है विदा का। हम भी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, और दें अपने शंकर को विदा। नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान किया गया एक रूप। झारनेट सेवा के विस्तार का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण जनजातीय और वंचित समुदायों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज की मुख्यमंत्री के साथ मंथन। लोजपा ने नाथवानी की जीत का जताया भरोसा। विकसित भारत युवा संसद 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। झारखंड की 3 प्रतिभागी राष्ट्रीय मंच पर करेंगी राज्य का प्रतिनिधित्व। और रांची में 17 जून से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का होगा आगाज। भारत समेत 5 देशों की टीमें लेंगी भाग। 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नामकुम डोरंडा पथ और पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर मार्ग को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को एक रूप करने, झारनेट सेवा के विस्तार, पीएम आवास योजना से संबंधित एजी रिपोर्ट को स्वीकृति देने और गोड्डा समाहरणालय में अवैध रूप से कार्यरत 5 लोगों को बर्खास्त करने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।
1: इनमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 162 करोड़ 82 लाख 22 हजार 100 रुपए मात्र की

0: द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव संख्या दो पथ निर्माण विभाग से श्री मुरारी भगत सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख इनके द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरुद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने के संबंध में।
1: रांची में आयोजित मिड टेक इनोवेशन डे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का शुभारंभ किया। भारतीय विकास ट्रस्ट और PHIA फाउंडेशन की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों के परीक्षण और उपयोग को बढ़ावा देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।
2: बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर जहां कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते हो। हम ऐसे भी चीजों को इनोवेट करें कि हमें पहले ही पता चल जाए कि उसको क्या समस्या है। आज के दिन में तो मस्तिष्क को समझने वाले भी मशीनें बन चुकी हैं। आज नए इनोवेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर रिजल्ट पाने में सक्षम होंगे। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हेल्थ मैपिंग हो यहाँ पर।
1: 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए JMM विधायक दल की बैठक कल शाम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति और पार्टी की आगे की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ सैयद नासिर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। लोक जनशक्ति पार्टी आर के नेता वीरेंद्र प्रधान ने कहा है कि पार्टी विधायक जनार्दन पासवान राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि नाथवानी की जीत विकास की राजनीति को मजबूती देगी। सेल की लौह अयस्क खदानों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को लेकर प्रबंधन और संयुक्त मजदूर यूनियनों के बीच विवाद गहरा गया है। गोवा में हुई वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। यूनियनों का कहना है कि मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए पुरानी उपस्थिति व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में कथित त्रुटियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता मैपिंग का स्तर कम है। पार्टी ने त्रुटियों के सुधार के लिए विशेष विंडो खोलने की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
4: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत ने कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और संसदीय कार्यप्रणाली से जोड़ना है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड से चतरा की राजश्री वीरा, रांची की मायरा

0: बनाने में हम लोग को लगभग 15-17 लाख रुपए लग गया है। आमदनी इसमें 80-85 तक पहुंच सकता है, अगर ज्यादा मेहनत नहीं मरने से 1 तक पहुंच सकता है। अभी तो हम लोग उम्मीद रखे हैं 80 तक गर्मी की वजह से।
1: पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में पूर्व माओवादी जग नारायण यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 24 घंटों में रांची के कांके क्षेत्र में सर्वाधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 17 और 18 जून को दूसरी दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी। झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के चेयरमैन डॉ. राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 150 खिलाड़ी और टीम सदस्य भाग लेंगे।
2: ये टूर्नामेंट खेलगांव में आयोजित की जाएगी, हरिवंश टाना भगत, और जो अलग अलग कंट्री से खिलाड़ी 4 देशों से आ रहे हैं, एक तो भारत का ही टीम है। ये 17 और 18 जून को खेल का शुभारंभ होगा, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका की टीमें भाग लेगी।
1: चक्रधरपुर की उभरती शतरंज खिलाड़ी अदिति ने रांची में आयोजित 25वीं झारखंड स्टेट चेस चैंपियनशिप में अंडर 13 बालिका वर्ग का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ उनका चयन आगामी राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान किया गया एक रूप। झारनेट सेवा के विस्तार का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण, जनजातीय और वंचित समुदायों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज किया मुख्यमंत्री के साथ मंथन। लोजपा ने नाथवानी की जीत का जताया भरोसा। विकसित भारत युवा संसद 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। झारखंड की 3 प्रतिभागी राष्ट्रीय मंच पर करेंगी राज्य का प्रतिनिधित्व। और रांची में 17 जून से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का होगा आगाज। भारत समेत 5 देशों की टीमें लेंगी भाग, 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। लोक गीतों के कार्यक्रम में आज गायिका हैं इंद्राणी सिन्हा। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं एक शिव भजन।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अंत में सुनिए शिव भजन।

0: लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायिका थी इंद्राणी सिन्हा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
6: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
5: कहाँ
7: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
10: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रखंड स्तर पर खुलने वाले मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की होगी व्यवस्था, छात्रों को कोचिंग की नहीं होगी जरूरत। दीपक प्रकाश की मंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बिहार सरकार दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। राज्य के सभी प्रखंडों में कल से 18 जून तक लगेगा प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर, एक ही स्थान पर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। और मौसम विभाग ने कल भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, जहां बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होगी। गया के खीजरसराय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था होगी जिससे छात्रों को कोचिंग संस्थानों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
1: हमने कहा है स्कूल को अच्छा करना है। जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, वैसे 211 जगह पर डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। वहाँ हमारे बच्चे कैसे नीट की परीक्षा का तैयारी कर सके, वहाँ पूरी तरह पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम पूर्ण रूप से आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है।
0: श्री चौधरी ने कहा कि अगले महीने प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि जीविका दीदियों के बीच वितरित की जाएगी।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय गृह मंत्री जी अगले महीने आएंगे और हम लोगों ने तय किया कि जिस दिन वो आएंगे उसी दिन बिहार की जितनी बची हुई बहने हैं सबके खाते में उनको 10,000 रुपया और जिसने उससे अधिक काम कर लिया उसको 20,000 रुपया देने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। साथ
0: इधर हमारे गया संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संयुक्त रूप से खीजरसराय में प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी।
2: 20 एकड़ में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और CNC मशीनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस केंद्र से प्रति वर्ष लगभग 7,000 युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने तथा 1,000 से अधिक MSME को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह पहला स्थानीय विनिर्माण का सशक्त बनाते हुए बिहार को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर और अधिक गति प्रदान करेगी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन और श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए खिजरसराय से धर्मवीर भारती।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFTP के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के खुलने से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने आज ही भोजपुर जिले के वाणासुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास किया। इस पार्क में राज्य की नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज से अभियान बसेरा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 21 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन परिवारों तक वास भूमि का अधिकार पहुंचाना और भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इसके तहत योग्य श्रेणी के उन वंचित सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन पंजीकरण सत्यापन ई KYC तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट।
3: शिविर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएम किसान सम्मान निधि किसान क्रेडिट कार्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लखपति दीदी पीएम स्वनिधि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं छात्रवृत्ति योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक योजना के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शिविरों में हेल्प डेस्क प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था रहेगी जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सके। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचे ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्र प्राप्त किया जा सके। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनका मंत्री पद पर बने रहना संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि गैर सदस्य व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने की 6 माह की संवैधानिक छूट का लाभ दोबारा नहीं दिया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों को आज शपथ दिलाई गई। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रंजन कुमार झा न्यायमूर्ति कुमार मनीष और न्यायमूर्ति राजकुमार को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में जबकि न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह विकास कुमार गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिहार के प्राणपुर में सबसे अधिक 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों में बारिश की संभावना है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी अपनी जारी की गई है।
1: दिनांक 16 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना और रोहतास जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं को 20 जून तक बंद कर दिया है। वहीं 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10:30 तक ही होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश के विभिन्न प्रखंडों में नवसृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में उर्दू और मैथिली की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 1 जुलाई से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगा। गोपालगंज की एमपी एमएलए अदालत ने मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक कुंजन सिंह की को अग्रिम जमानत दे दी है। मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में 2 मई को आयोजित कार्यक्रम से जुड़े मामले में यह जमानत मिली है। नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 व्यक्तियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चुनकिया बाबा के पास स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया था और बेरहमी से पिटाई कर दी थी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भेजा गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जांच के लिए एसडीपीओ राजगीर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मुंगेर जिले के गंगटा मोड़ चौक के पास ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुरबारी बहुआरा स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने हथियार के बल पर 25 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बटिया चौक के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 346 लीटर शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए आवश्यक जीवन प्रमाणीकरण करवाने के लिए आज समाहरणालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रखंड स्तर पर खुलने वाले मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की होगी व्यवस्था, छात्रों को कोचिंग की नहीं होगी जरूरत। दीपक प्रकाश की मंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बिहार सरकार दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। राज्य के सभी प्रखंडों में कल से 18 जून तक लगेगा प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर, एक ही स्थान पर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। और मौसम विभाग ने कल भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
1: भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज पर बीते 7 जून से आवागमन शुरू हो गया। राज्य के पथ निर्माण मंत्री सह भीपू विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही निर्धारित नियमों के आधार पर बेली ब्रिज पर परिचालन शुरू किया गया। गौरतलब है कि विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन बाधित हो गया था। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान श्री चौधरी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून तक आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत कर लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक सहयोग मांगा था। इसके बाद बीआरओ की टीम भागलपुर पहुंची और पथ निर्माण विभाग तथा स्थानीय जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। बेली ब्रिज के शुरू होने से लाखों लोगों को सुविधा मिली है और लोगों में खुशी देखी जा रही है। बेली ब्रिज उद्घाटन के अवसर पर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज पाल, भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, बीआरओ के अधिकारी विभिन्न कुमार चंद, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी सुरेंद्र सिंह सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, भाजपा और जदयू के कई नेता तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
2: एक मैं अनुरोध जरूर करूंगा, आप घंटों ट्रेवल

0: करते हैं। पूल पे जो क्यू सिस्टम है, जो लाइन सिस्टम है, उसको कृपया फॉलो करें, क्योंकि वो लाइन सिस्टम है जो पहले आए हैं उनको हम पार कराएंगे और जो हमारा ब्रिज बिल्कुल दुरुस्त होकर के चलेगा, तो वहाँ अफरा तफरी नहीं करें और जो व्यवस्था है वहाँ जो हमारे लोग हैं उनके निर्देशों का पालन करें ताकि उनको हम तुरंत वहाँ से पार करा सकें।
1: राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के आगमन के साथ ही कृषि कार्यों में तेजी आ गई है और किसान बड़े उत्साह के साथ खेतों में जुट गए हैं। वहीं बीते दिनों जिले में आए भीषण तूफान और बारिश के कारण आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। तूफान के कारण जगह जगह पेड़ गिरने तथा बिजली के पोल टूटने से कई दिनों तक लोगों को भिन्न प्रकार की सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन और बिजली विभाग की तत्परता से स्थिति को सामान्य कर दिया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी के साथ श्री मोदी ने भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इस अवसर पर उनके समर्थकों और एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के रूप में देख रहे हैं। वहीं 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना की गई। आदमपुर स्थित मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। वहीं पुराना मंदिर में भव्य श्रृंगार पूजा के साथ 1200 दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर नगर विधायक रोहित पांडे, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना की। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेले को भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बीते दिनों जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अजगैबीनाथ धाम घाट का निरीक्षण किया तथा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर नगर विकास मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा भागलपुर पहुंचे और श्रावणी मेले को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेले की भव्यता तथा लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश दिए। पिछले दिनों जिले के 13 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार बीएड सीटी प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 7166 परीक्षार्थियों में से 6558 उपस्थित रहे, जबकि 608 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर जिले में विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वन विभाग की ओर से सैंडिस कंपाउंड परिसर के स्टेशन क्लब के पास 50 से अधिक पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SSP प्रमोद कुमार यादव, DDC प्रदीप कुमार सिंह, वन विभाग के DFO आशुतोष राज सहित कई पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया।
2: अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।

0: आप जोड़ देते।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं राकेश कुमार। इनके स्वर में आरंभ में आपको सुनवाते हैं निदा फाजली की ये गीत रचना।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म आन मिलो सजना से लिया है। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
1: Nexa.
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
2: करो।
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे,

0: बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे।

0: ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
4: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:15 होने को हैं। प्रस्तुत है खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरशार अहमद।

श्रोताओं नमस्कार। खेल जगत के तमाम छोटे बड़े और रोचक खबरों को समेटे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आपका स्वागत है। और खेल खिलाड़ी के नए अंक को लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं मैं मिलिंद गुंजन। स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक खेल गतिविधियां, खेल जगत की रोचक खबरें। स्पोर्ट्स कॉर्नर में आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। और कार्यक्रम के आखिरी स्तंभ यानी हमारे सवाल आपके जवाब में होगी आप सबों की खेल ज्ञान की परीक्षा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल जगत के ताजा तरीन हलचलों से हमारे नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां में।

और खेल गतिविधि की शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खबर से, जहां इसकी शुरुआत हो चुकी है। 12 जून को शानदार रंगारंग कार्यक्रम के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभारंभ हुआ, शानदार आगाज हुआ। इसके उद्घाटन मुकाबले में मैक्सिको ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए जीत की है, 2-0 से दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया है। पहले ही मुकाबले में 3 खिलाड़ियों को लाल कार्ड मिला है। नाटकीय मुकाबले में सह मेजबान मैक्सिको ने अब तक के सबसे बड़े फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले में गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में 2-0 से हरा कर अपने अभियान का धमाकेदार अंदाज में आगाज किया है। दक्षिण अफ्रीका को 9 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। खचाखच भरे एंजेका स्टेडियम में मैक्सिको की टीम पर अपेक्षाओं का दबाव होना स्वाभाविक था, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। दक्षिण अफ्रीका को आसानी से हराकर अपने प्रशंसकों को जमकर जश्न मनाने का मौका दिया। जूलियन क्विनोइस 90वें मिनट और राउल जिमेनेज 66वें मिनट ने मैक्सिको के लिए गोल दागे। साथ ही अगर हम देर रात के मुकाबले की बात करेंगे और ब्राजील की, जो सबसे तमाम लोगों के निगाहों में ब्राजील की टीम रहती है, क्योंकि पेले इस टीम से जुड़े हुए रहे हैं और पेले की इस टीम ने यानी ब्राजील की टीम किसी तरह से हार को टालने में मुकाबले में सफल हुए। 5 बार का विश्व चैंपियन ब्राजील लगातार 29 मैचों से अवैध अजय मोरक्को की टीम के खिलाफ संकट में था। टीम 92 साल में विश्व कप के अपने शुरुआती मुकाबले में हार की ओर बढ़ रही थी, तभी टीम के स्टार विनिसियस जूनियर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उन्होंने पैरों का जादू दिखाते हुए खूबसूरत गोल दागकर न सिर्फ ब्राजील की लाज बचाई बल्कि कोच कार्लो एंसेल्टी के टीम को एक महत्वपूर्ण अंक भी दिला दिया। यह पहली बार है जब मोरक्को ने विश्व कप में दक्षिण अमेरिका की टीम के खिलाफ गोल किया है। इससे पहले वह 1970 में पेरू और 1998 में ब्राजील के खिलाफ गोल नहीं कर सका था। नहीं उतरे नेमार, ब्राजील के स्टार और अनुभवी खिलाड़ी नेमार इस मुकाबले में नहीं खेले। दाईं पिंडली में चोट की वजह से वह अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। साथ ही हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की और खबरों को अपने अगले स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में सहेजेंगे। बाकी की बात करते हैं तो महिला T20 विश्व कप की अब बात कर लेते हैं। महिला T20 विश्व कप में भारतीय लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्मृति मंधाना के अर्धशतक के बाद रविवार को भारतीय स्पिनरों ने फिरकी का कमाल दिखाया। दीप्ति शर्मा 10 रन देकर 5 विकेट और श्रीचरणी 21 रन देकर 3 विकेट की घूमती गेंदों के आगे पाकिस्तान की टीम 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17 ओवर में महज 106 रनों पर ही सिमट गई। भारतीय टीम ने 64 रन की बड़ी जीत के साथ विश्व कप में अपने अभियान का शाही अंदाज में आगाज किया। दीप्ति ने अपने अंतिम ओवर में 3 विकेट लिए। पाकिस्तान की ओर से ओपनर मुनीबा अली 41 ही कुछ देर तक टिक पाई। उनके अलावा अलीजा 18, गुलफिरोजा 12 और आयशा जफर 12 ही केवल दोहरे अंक तक पहुंच पाई। भारत के सभी 10 विकेट स्पिनरों ने झटके, 1 विकेट से फाली ने लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान ने पावर प्ले में 1 विकेट पर 52 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की। इसके बाद उसने अंतिम 9 विकेट महज 54 रन जोड़कर गंवा दिए। इससे पहले मंधाना ने 2 जीवनदान का फायदा उठाते हुए 44 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली और हरमनप्रीत 36 के साथ तीसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण 91 रन जोड़े। अंत में ऋचा ने 17 गेंदों में 34 रन बनाए और दीप्ति नाबाद 12 के साथ 6वें विकेट के लिए 21 गेंदों में तूफानी 45 रन बटोरे। आखिरी दौर में भारत ने 38 रन बटोरे। इस टीम ने शुरुआती झटकों से उबरकर 7/170 का पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप का अपना सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। वहीं अब बात भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की करते हैं और उसमें टेस्ट मैच की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद क्रिकेट के मैदान में भी हम चलेंगे वनडे क्रिकेट की तरफ। लेकिन उससे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात, जिसमें भारत ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय स्पिन तिकड़ी, मानव सुधार, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव की फिरकी के फंदे से अफगानिस्तान टीम निकल नहीं सकी। स्पिन, ड्रिफ्ट और फ्लाइट के घातक मिश्रण के दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराते हुए टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत की। पूरे टेस्ट में भारतीय स्पिनरों का ऐसा बलबला रहा कि 19 में 15 विकेट उनकी झोली में गए। पदार्पण कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर सुधार ने 7 विकेट झटके, जबकि वाशिंगटन सुंदर और ने 5 और कुलदीप यादव ने 3 शिकार किए। तीसरे दिन अफगानिस्तान ने 89 रन पर 7 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन सुधार ने सुबह के सत्र में ही उनकी बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस युवा स्पिनर ने शानदार नियंत्रण और तीखे टर्न के आगे अफगानिस्तान पहली पारी में ही पस्त हो गई। सुधार ने पदार्पण में 1 पारी में 6 विकेट लेकर इतिहास दर्ज दिया। उनकी गेंदों पर लगातार रिवॉल्यूशन गेंद का हवा में घुमाव दिखाई दिया, जिससे बल्लेबाजों को फ्रंट फुट बैक फुट दोनों खेलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। सुधार ने सबसे बड़ा झटका रहमत शाह को दिया। अफगानिस्तान बल्लेबाज ने 100 गेंदों पर जुझारू अर्धशतक जड़ा था और वह भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े थे।
लेकिन स्वीप खेलने की कोशिश में वह सुधार की गेंद पर चूक गए, वह विकेट गवा बैठे। पहली पारी में 152 रन पर सिमटने के बाद अफगानिस्तान को फॉलो मिला। दूसरी पारी में सदिकुल्ला आदल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सुधार के खिलाफ क्रीज छोड़कर खेलने की रणनीति अपनाई। उन्होंने स्पिन के असर को कम करने के लिए आगे बढ़कर शॉट लगाए और कुछ समय तक भारतीय गेंदबाजों के दबाव में उन्होंने रखा। हालांकि तब तक मैच भारत की मुट्ठी में जा चुका था। दूसरी पारी में वाशिंगटन सुंदर ने अपने ड्रिफ्ट और सटीक लाइन लेंथ से हमला बोलते हुए 4 विकेट झटके। दूसरी ओर कुलदीप यादव को पिच से अपेक्षित टर्न नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फ्लाइट और विविधता का शानदार उपयोग किया और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए ललचाकर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट झटक लिए। सुधार पदार्पण टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले दूसरे भारतीय बने। 1988 में नरेंद्र हिरवानी बने थे। इससे पहले 33 रन देकर 6 विकेट लेकर सुधार ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में किसी गेंदबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनसे आगे वेस्टइंडीज के कॉर्नवाल 7 विकेट 75 रन देकर 2019 में ऐसा कारनामा कर किया था। उन्होंने सुधार पदार्पण टेस्ट में ही एक पारी में 5 विकेट लेने वाले सदी के दूसरे गेंदबाज हैं। अमित मिश्रा ने 2008 में 71 रन पर 5 विकेट लिए थे। टेस्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखें तो उसमें अफगानिस्तान की पारी और 300 रन से जीत, उसके अलावा वेस्टइंडीज पर पारी और 272 रन, राजकोट में अफगानिस्तान के विरुद्ध पारी और 262 रन की जीत, बेंगलुरु 2018 में, बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 239 रन से जीत, मीरपुर 2007 में, श्रीलंका के विरुद्ध पारी और 239 रन से जीत, नागपुर 2017 में और 2022 में मोहाली में पारी और 222 रन से जीत हासिल की थी श्रीलंका के विरुद्ध। इस जीत के बाद शुभमन गिल ने कहा कि जीत टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, हमने हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया, मैं बहुत खुश हूं। तो इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत अफगानिस्तान के विरुद्ध देखने को मिली और इसमें मानव सुथार बहुत शानदार उन्होंने गेंदबाजी की और मैन ऑफ द मैच बने। अब बात वनडे मुकाबले की कर लेते हैं। यहां भी बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की टीम को पटकनी दी है और पहला मुकाबला ही जीत लिया। 30 गेंदबाज नूर बराड और बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने अपने पहले ही वनडे में चमक बिखेरी। पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनकर उतरे इन दोनों गेंदबाजों ने अपने स्विंग और फिरकी का कमाल दिखाते हुए 3-3 विकेट चटकाए। इससे भारतीय टीम ने बारिश से बाधित मुकाबले में अफगानिस्तान को शुरुआती वनडे में 13 गेंद से 7 विकेट से हरा दिया। लगातार बारिश के कारण मैच 4 घंटे 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ। इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। टीम इंडिया ने विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज 102 की शतकीय पारी के बावजूद अफगानिस्तान को 24 ओवर 5 गेंद में 194 रन पर समेट दिया। फिर कप्तान शुभमन गिल 84 और केएल राहुल 39 की नाबाद पारियों से 22.5 गेंद में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया। गिल ने ईशान किशन 34 के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी निभाई। गिल ने रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़कर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। हालांकि रोहित दुर्भाग्यशाली रहे जो रनआउट हो गए। दोनों ने शानदार अर्धशतक की साझेदारी के साथ टीम की रणनीति भी बनाई। राशिद खान ने किशन की गिल्लियां बिखेरकर भारत को दूसरा झटका दिया। T20 के नए कप्तान बने श्रेयस अय्यर 12 सस्ते में आउट हो गए। गिल ने राहुल 4 विकेट के लिए 853 रन जोड़कर जीत की औपचारिकता पूरी की। इससे पहले गुरबाज के अलावा हसमतुल्ला सहीदी 27 और अजमतुल्ला उमरजई 26 ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए। अर्षदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2-2 विकेट चटकाए। गुरनूर ने अपने पहले ही ओवर में लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की और गेंद को बाहर की ओर स्विंग कराया। उनकी शुरुआत कुछ गेंदें फुल लेंथ से बाहर की ओर स्विंग हुई। इसके बाद उन्होंने लेंथ को कम करते हुए इब्राहिम जादरान को गलती करने पर मजबूर किया जो हवा में शॉट खेलने की कोशिश में मिड ऑफ पर कैच आउट हुए। इस गेंदबाज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तुरंत सफलता मिल गई। रोहित 39 साल 75 दिन वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने महेंद्र अमरनाथ 39 साल 36 दिन 1989 का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित वनडे में जैक स्केलिस 11,579 को पछाड़ते हुए सर्वाधिक रन बनाने में अब 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित 283 मैचों में 11,593 रन बना चुके हैं। सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड सचिन 18,246 के नाम है। इसके साथ ही रोहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय जबकि कुल 8वें ओपनर बन गए हैं। वह अपने 384वीं पारी में वीरेंद्र सहवाग 16,119 रन 400 पारियों के क्लब में अब शामिल हुए। इनके अलावा सनत जयसूर्या, क्रिस गेल, डेविड वार्नर, ग्रिम स्मिथ और डेसमंड हेन्स ने 16,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो वनडे में भी भारत के लिए अच्छी खबर थी। अब बात कर लेते हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम की। अंडर 19 क्रिकेट टीम में टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भारत के अंडर 19 वनडे टीम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ अगले महीने होने वाले
दौरे के लिए गुरुवार को 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। टीम को 3 वनडे और 2-4 दिवसीय मैच खेलने हैं। दोनों सीरीज के लिए टीम की कमान यशवर्धन सिंह चौहान को सौंपी गई है। 17 वर्षीय अन्वय दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर है। उन्होंने नवंबर 2025 में बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वनडे ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान अंडर 19 के खिलाफ इंडिया ए अंडर 19 के लिए एक मैच खेला और वह पहले ही गेंद पर 0 पर आउट हो गए थे, पर विकेट के पीछे 2 कैच लपके थे। उन्होंने कर्नाटक की ओर से विनुमांकर ट्रॉफी की 6 पारियों में 220 रन बनाए थे। पहला वनडे 4 जुलाई, दूसरा 6 और तीसरा 9 जुलाई को खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच 13 से 16 जुलाई तक गाले में और दूसरा 20 से 23 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सफर ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन के सेमीफाइनल में खत्म हो गया है। शनिवार को शीर्ष वर्ता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से लगातार गेम में पराजित हो गई। इससे इस भारतीय खिलाड़ी का बीडब्ल्यूएफ खिताब का इंतजार बरकरार रहा। दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन 43 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया की 3रे नंबर की खिलाड़ी यामागुची से 20-22, 12-21 से हार गई। सिंधु के बाहर होने के साथ ही इस विश्व टूर सुपर 500 टूर्नामेंट में भारत का अभियान भी समाप्त हो गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की। तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में चयन किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। चयन समिति की बैठक के बाद घोषित 32 सदस्य टीम में गुरविंदर सिंह 100 मीटर, अनिमेश कुजूर 200 मीटर, गुलवीर सिंह 5000 और 10000 मीटर, तेजस्विन शंकरन डेक्थलॉन और ऊंची कूद, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपलचेज और पैदल चाल एथलीट प्रियंका भी इसमें शामिल है। इधर बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश ने महिला T20 विश्व कप में रविवार को नीदरलैंड्स को आसानी से 6 विकेट से हरा दिया। नीदरलैंड्स के 8 विकेट पर 139 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश ने 19 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट खोकर 141 रन बनाकर आसान जीत हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच जुवेरिया फिरदौस 50 ने शानदार शुरुआत दी और शुरुआती मौके का फायदा उठाते हुए 3 अर्धशतक बनाया। समीर अख्तर 37

रन बनाकर नाबाद, जबकि सोनू अख्तर ने नाबाद 18 रनों का योगदान दिया। ये तो थी खेल जगत की ताजा तरीन खबरें हमारे मित्र स्तंभ खेल गतिविधियां में, और श्रोताओं आपको ले चलते अपने अगले स्तंभ खेल जगत की रोचक खबरों की तरफ।

खेल जगत के रोचक खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में जन्म लेने वाले और पंजाब के लिए खेल चुके ऑलराउंडर निखिल चौधरी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते नजर आएंगे। तस्मानिया और होबार्ट हरिकेस के लिए खेलने वाले 30 वर्षीय निखिल को गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ उसकी सरजमी पर होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में शामिल किया गया है। वह 62 साल से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले भारत में जन्म लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। 3 मैच की सीरीज चटगांव में 17 से 21 जून तक खेली जाएगी। निखिल को ओपनर ट्रेविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया है। हेड को आराम दिया गया है। निखिल बेल्जियम में यूरो T20 टूर्नामेंट में जेबी ब्रॉब्स की ओर से खेल रहे थे। हाल ही में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल से जुड़े थे। चयनकर्ता टोनी डोटमेंट ने कहा है कि चयन समिति बिग बैश लीग में उनकी फॉर्म से प्रभावित थी, विशेषकर पिछले सत्र में, जिसके कारण उन्हें टीम में शामिल किया गया। निखिल ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं है, लेकिन रहवासी होने के कारण वह ICC पात्रता को पूरा करते हैं। अस्थायी वहां के रहने वाले हैं। वह 2020 में अपने चाचा के साथ क्विंसलैंड आए थे और उन्होंने BBL में होबार्ट हरिकेस के साथ 3 शानदार सत्र बिताए हैं। निखिल ने पंजाब के लिए 2017-19 के बीच 14 मैच खेले हैं। इनमें से 12 T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुकाबले खेले हैं। लिस्ट ए के 2 मैच विजय ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने खेले हैं और अब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते नजर आएंगे। और अब बात न्यूजीलैंड क्रिकेट के महानायक केन विलियमसन की, जिन्होंने अब क्रिकेट के मैदान से विदा लेने का फैसला कर लिया। अपने दौर के सबसे उम्दा बल्लेबाजों में से एक, न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे सफल दौर के नायक केन विलियमसन ने 16 बरस के सुनहरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुक्रवार को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। विलियमसन को लंबे समय तक आधुनिक क्रिकेट के फैब फोर का हिस्सा माना जाता है, जिसमें भारत के विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट भी शामिल थे। अपने शानदार करियर में विलियमसन ने देश के लिए 378 मुकाबले खेले। इनमें बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। पूरी दुनिया में उन्होंने सम्मान पाया। उन्होंने पिछले साल T20 से संन्यास लिया था। 35 वर्षीय विलियमसन इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहे टीम का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड पहला मैच 115 रन से हार गया था। विलियमसन पहली पारी में खाता नहीं खोल सके थे और दूसरी पारी में 18 रन पर आउट हो गए। दूसरा टेस्ट मैच 17 जून से दाउबोल में खेला जाएगा। सीरीज के बीच में ही विलियमसन ने संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। पूछने पर कि उन्होंने इस समय संन्यास का फैसला क्यों लिया, उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया के बाद लिया गया है। मैं पिछले कुछ दिन से इसके बारे में सोच रहा था और लगा कि यह सही समय है। उसका दूसरा पहलू है कि मैं एक प्रतिभाशाली समूह देख रहा हूं जिनके आगे एक सफर है, जो इस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ कुछ खास चीजें कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड पर अगर नजर दौड़ाएं तो टेस्ट मैच 110, 9,515 रन, 54.06 का उनका औसत है। सर्वश्रेष्ठ 251 है, 38 अर्धशतक और 33 शतक उनके नाम शामिल हैं। वनडे 175 उन्होंने खेले हैं, 7,256 रन बनाए हैं, 48.69 का औसत है। 148 सर्वश्रेष्ठ है, 47 अर्धशतक और 15 शतक शामिल हैं। T20 93 उन्होंने खेले हैं, 2,575 रन बनाए हैं, 33.34 का औसत है। 95 सर्वश्रेष्ठ है, 18 अर्धशतक शामिल है। कप्तान के रूप में टेस्ट मैच में 49 मैचों में कप्तानी की, 22 में जीत, 10 में हार और ड्रॉ या टाई 8 छूटे हैं। वहीं वनडे की बात करें तो 91 मैचों में उन्होंने कप्तानी की है, 46 मैचों में उन्हें जीत हासिल हुई है, 40 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, एक मैच ड्रॉ या टाई रहा और बेनतीजा 4 मुकाबले रहे। T20 में 75 मैचों में टीम की कप्तानी की, 39 में जीत हासिल की, 34 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, एक मुकाबला ड्रॉ टाई रहा और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में सर्वाधिक रन, सबसे ज्यादा शतक, वनडे में चौथे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज और 2015 में ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने। वहीं उनके रिटायरमेंट पर विराट कोहली ने कहा, विराट कोहली ने केन के संन्यास लेने पर कहा है कि वर्षों के दौरान प्रतिद्वंदी से दोस्त बनने तक का सफर काफी शानदार रहा। लंबे समय तक आपको बल्लेबाजी करते देखना और आपके खिलाफ खेलना मेरे लिए सुखद अनुभव रहा। उसने भी

ज्यादा हमारी दोस्ती और खेल के साथ साथ जीवन को लेकर साझा विचारों के महत्व देता हूं। दोस्त जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। ये शब्द थे विराट कोहली के, जिन्होंने कि उन्हें अपना शानदार दोस्त बताया। ये तो थी खेल जगत की रोचक खबरें श्रोताओं, और अब हम आपको ले चलते अपने अगले स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में।

स्पोर्ट्स कॉर्नर श्रोताओं पर बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट्स कॉर्नर में हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसका शानदार आगाज 12 जून को हो चुका है। इसके उद्घाटन समारोह की कुछ एक झलक हम आपको सुनाते हैं। आइए पहले उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां

तो श्रोताओं, ये उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां थी जो आप सुन रहे थे। उद्घाटन समारोह जो शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ, फीफा विश्व कप 2026 का आगाज। और शुरुआती मुकाबले से ही इस फीफा वर्ल्ड कप ने एक बार फिर से क्यों पूरे विश्व में ये इतना लोकप्रिय है वो दिखा दिया है, दर्शा दिया है। ब्राज़ील जो बहुत मजबूत टीम मानी जाती है और 5 बार का विश्व चैंपियन ब्राज़ील, जब पहले मुकाबले में उतरा तो अपने से कहीं नीचे पायदान पर टीम के विरुद्ध बहुत ज़बरदस्त उन्हें संघर्ष करना पड़ा और उनके युवा खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने गोल दागकर अपनी टीम की हार जो है वो बचा ली और वो मुकाबला बराबरी हो गया। इस मुकाबले के बाद ब्राज़ील के इस खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने कहा कि हमारी शुरुआत बहुत खराब रही है, हमें निश्चित रूप से गेंद पर नियंत्रण रखना होगा, हमें आगे बेहतर खेल दिखाना होगा, मैं ब्राज़ील को फिर से शीर्ष पर लाने का प्रयास करूंगा। वहीं कार्लोस एंसेलोटी जो कोच हैं ब्राज़ील के, उन्होंने कहा कि टीम शुरू में बेचैन लग रही थी, वह तनाव में दिख रही थी, वह काफी असंतुलित नजर आ रही थी, हिम्मत नहीं आ रही, खिताब पहले मैच के आधार पर नहीं जीता जाता, ये कोच ने कहा है। और इस विश्व कप में अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अमेरिका ने सह मेजबान है विश्व कप के इतिहास में पहली बार 4 गोल दागे हैं। पराग्वे को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी, फुलरिन का डबल धमाल हुआ है इस मुकाबले में। कतर में 4 साल पहले 4 मैचों में सिर्फ 3 गोल दागने वाले अमेरिका ने इस बार विश्व कप में हैरत अंगेज शुरुआत की है। फुलरिन बालोगुन के रिकॉर्ड गोल से अमेरिका ने पहले ही मुकाबले में दे दनादन 4 गोल दाग दिया। नतीजा मेजबान टीम ने पराग्वे को एक तरफा मुकाबले में 4-1 से हरा कर फुटबॉल विश्व कप की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो ये है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इधर तो पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मानना है कि उनकी टीम को विश्व कप फुटबॉल के खिताब के बारे में सोचने की बजाय अच्छी शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुर्तगाल की टीम भी दावेदार में शामिल है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने कहा कि अच्छी शुरुआत करना, पहले और दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करना और फिर ग्रुप में पहले स्थान पर रहना अहम है, इसके बाद हम सिर्फ एक मैच पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस तरह से जो टीम के उनके वैसे खिलाड़ी हैं जो सुपरस्टार रहे हैं वो अपने अपने बात अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और लियोनेल मेसी की बात करें, जो लियोनेल मेसी है पूरे विश्व में उनके फैन हैं, उनके सामने भी महान क्लोज का रिकॉर्ड तोड़ने की बड़ी चुनौती होगी। तो इस तरह से कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इस बार बनने वाले हैं, टूटने वाले हैं और उन रिकॉर्ड का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से शानदार आगाज हुआ है इस फीफा विश्व कप का और कई कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व को जता दिया है कि फुटबॉल की लोकप्रियता क्यों है पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा। जो सांसों को थाम देने वाले मुकाबले होते हैं वो फुटबॉल के मैदान में आप देख सकते हैं, बहुत ही रोचक संघर्ष देखने को मिलेगा। अभी तो केवल शुरुआती मुकाबले अभी हो रहे हैं, इन शुरुआती मुकाबलों में ही बहुत शानदार मुकाबले खेले हैं, चाहे ब्राज़ील की बात कर लें, मैक्सिको की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, ये तमाम टीम बहुत शानदार खेल दिखा रही है। लेकिन उनकी अपोनेंट टीम भी जो है वो भी उतनी ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसलिए आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये फीफा विश्व कप आगे रोमांचकारी होने वाला है। तो हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी और इससे जुड़ी हर अपडेट्स अपने श्रोताओं तक अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आज के स्पोर्ट्स कॉर्नर श्रोताओं इतना ही, अब हम आपको ले चलते अपने अगले स्तंभ जहां लेते आपके खेल गन की परीक्षा, हमारे स्तंभ हमारे सवाल आपके जवाब में।

हमारे सवाल आपके जवाब में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब तैयार बैठे होंगे हमारे सप्ताह के दो प्रश्न नोट करने के लिए। तो नोट कीजिए, हमारे सप्ताह का पहला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। पहला प्रश्न एक बार फिर से, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लिब्रो शब्द किस कोर्ट गेम से संबंधित है। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से, लिब्रो शब्द किस कोर्ट गेम से संबंधित है। इन दोनों प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा। इसके सही हल 7 दिनों के अंदर अंदर हमें हमारे पते पर लिखकर भेज दें। हमारा पता है, हमारे सवाल आपके जवाब, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 812001। और आप हमें मेल से अपने सही जवाब भेज सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है phirbhagalpur@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का। और अब बारी 1 जून को पूछे गए सवाल की, सवाल के सही जवाब की और साथ ही सही जवाब भेजने श्रोताओं के नामों की। तो 1 जून को हमने आपसे पूछा था, हाल ही में संपन्न आईपीएल सीजन 19 में पर्पल कैप किस गेंदबाज के सर पर सजा। इसका सही जवाब है कैगिसो रबाडा, जिन्होंने 29 विकेट चटकाए, गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे थे और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया कैगिसो रबाडा ने और पर्पल कैप कैगिसो रबाडा के सर सजा। हमारा दूसरा प्रश्न था, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। इसका सही जवाब है निशानेबाजी। इन दोनों प्रश्नों के सही सही जवाब आप श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। बड़ी खजरपुर मस्जिद देन भागलपुर से भाई गुलफराज आलम, बेगम समारा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, मुजाहिदपुर प्रपटला भागलपुर से मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, कादिर नुरुलहदा, जिशान अक्रम, एम के नाज, अकबरनगर सुल्तानगंज से अशोक कुमार गुप्ता, विनोद गुप्ता, दर्श गुप्ता व रंजीत गुप्ता, बौसी भुरना से अंजना कुमारी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, केंद्रीय आवासीय परिषद आशियाना दीघा रोड पटना से अरशान अहमद, जारिस वसी अहमद, नबा कौसर, साजली ममसी व शादाब अहमद, भीखनपुर चौक भागलपुर से सलाउद्दीन परवाज एवं आयशा खातून, मायागंज दुर्गा स्थान बनारी भागलपुर से संतोष यादव, आशीष व दीपक, लुत्फ अली लेन मोहल्ला काजीवली चौक भागलपुर से फोजल नसीम रोज, सुमेरा शहरीन एवं फैसल नसीम, नजीर मोमिन लेन इस्लामपुर चंपानगर, नाथनगर से शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर व तारिक अनवर। आप सभी श्रोताओं को सही जवाब भेजने के लिए खेल खिलाड़ी की ओर से ढेर सारी बधाइयां। और अब तुम्हारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर हमारे आपकी मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए खेल खिलाड़ी की पूरी टीम के

आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, प्रस्तुत करते थे मोहम्मद सरशार अहमद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज़ और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।

0: खैर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा अमेरिका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान सीरिया और गजा में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल रेलवे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होरमूज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होरमूज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और

0: वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed a memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर MOU की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर MOU को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved.

0: ये हवाई अड्डा 1,20,00,000 मुसाफिरों को हवाई सफर की सहूलियत फराहम करेगा, जो कि हवाई अड्डा मुकम्मल होने के बाद तवक्को है कि 7 करोड़ मुसाफिर सालाना यहां से सफर कर सकेंगे। आज पहली परवाज के जरिए सफर करने वाली एक मुसाफिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए हवाई अड्डे के आगाज पर खुशी का इजहार किया। मुस्तकबिल में मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दस्तियाब होंगी जो बजट और सफरी खिदमात को पूरा करेंगी। इस हवाई अड्डे पर फजाई माल बर्दारी की खसूसी सहूलत भी दस्तियाब होगी, जो इब्तदाई तौर पर 2,00,000 मेट्रिक टन सालाना होगी, जिसे बाद में 15,00,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाने का मनसूबा है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: अमरीका और ईरान की जानेब से मगरबी एशिया जंग को खत्म करने के लिए एक माहदे के ऐलान करने के कुछ घंटों बाद ही इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदों पर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगी। इसराइल की सलामती की पॉलिसी की बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि IDF इसराइली शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए लबनान, शाम और गजा में सलामती जोन्स में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तैनात रहेगी। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने फौजों की वापसी के लिए बैन अल-अक़वामी वक्त की मुद्दत पर अमल करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इनकार से बराह रास्त मुत्तला किया। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। आबनाए हुरमुस एक तंग बहरी रास्ता है जिसे आलमी तेल सप्लाई के 5वें हिस्से की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमद रफ्त हो सकेगी। अमन के इस माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां आला सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, उनके पास खाम तेल के वाफिर जखायर मौजूद हैं और पेट्रोल और डीजल के खातिर ख्वाह जखायर को बरकरार रखे हुए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरमा सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बारे में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए ये इंकशाफ किया। फर्टिलाइजर के महकमे में ज्वाइंट सेक्रेटरी वंदना प्रियाशी ने कहा कि मुल्क में फर्टिलाइजर्स का जखीरा मामूल के मुताबिक है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा कार्गो दिशा बहिफाजत आबनाए हुरमुस पार कर गया है। तवक्को है कि जुमेरात को ये दहेज बंदरगाह गुजरात की दहेज बंदरगाह पहुंच जाएगा। रेलवे की वजारत ने शिमाली रेलवे की अंबाला डिवीजन के लिए 201 करोड़ रुपए मालियत के कवच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कवच मुल्क में तैयार करदा खुदकार रेल तहफुजाती निजाम है जिसे ऑपरेशनल सेफ्टी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वजह किया गया है। रेलवे की वजारत ने गुजरात में अहमदाबाद डिवीजन के लिए भी 140 करोड़ रुपए के कवच प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अहमदाबाद के साइबर जराइम से मुतालिक महकमे ने नीट इम्तिहान में हुई धोखादही में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में राजस्थान और बिहार से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद के साइबर जराइम के महकमे में ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस शरद सिंघल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान से हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमान जाली सोशल मीडिया चैनल चला रहे थे जिनमें वो नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान के पर्चे बेचने का दावा कर रहे थे। वजारत दिफा ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नेशनल कैडेट कोर NCC के नए रियासती डायरेक्टोरेट्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। इस फैसले से मुल्क में NCC रियासती डायरेक्टोरेट्स की कुल तादाद बढ़कर 19 हो गई है। वजारत ने वाजे किया है कि नए डायरेक्टोरेट्स की तश्कील से मरकजी सतह पर मुनाकिद होने वाले बाकायदा कैंप्स जैसे योम जमहूरिया की परेड का कैंप और ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में शिरकत करने वाले कैडेट्स की तादाद में इजाफा होगा। मुल्क के हसिस बाजार के अहम इशारे आज के कारोबारी सेशन के अख्तिताम पर तकरीबन 1% इजाफे के साथ बंद हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के ऐलान के बाद सरमायाकारों का रुझान मुस्बत हुआ है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के मैच में स्वीडन ने ट्यूनेशिया को 1-5 गोल से करारी शिकस्त दी। आज के दीगर मैचों में अमरीका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बहामी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्त

का वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ ने अंदरूने मुल्क तैयार तबील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपने आपको, थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जो अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी।
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने

0: कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं सिद्ध जी, बताएं।
1: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
1: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जायी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
2: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
3: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी।
3: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां हैं।
1: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
1: तो फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
1: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
4: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इस हेतु बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है।
0: जी बताए।
1: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
1: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
1: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
0: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
3: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
0: जी,
3: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
0: वो निकल जाती है,
3: वेस्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं। हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो

0: पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
2: जी धन्यवाद। मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेषज्ञ से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
0: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है? और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है? और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना। और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे

0: आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
1: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश जी।
0: जी नमस्कार,
1: नमस्कार है
0: जी। सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
2: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
0: जी।
2: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी,
0: जी क्या सवाल है आपका?
3: कुमार जी नमस्ते।
0: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
3: डीजी और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
2: नमस्कार नमस्कार।
3: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
0: जी,
3: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
0: जी।
4: जी,
3: और योगा करने से वो ये होगा
5: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है। उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटि सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
0: जी,
2: प्राणायाम और आसन
0: जी।
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
0: जी।
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
0: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
6: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर।
0: जी बताइए
6: सर, जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
2: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, सदैव स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि स्वास्थ्य, सॉरी कुछ
0: जी,
2: है ना वो, तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
0: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि

0: कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
1: देखिए, आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
0: जी।
1: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
0: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार। पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए आप भी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
0: प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। जी, सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वजह से आंखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर, जैसे अनीता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
0: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
1: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
0: जी,
1: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
0: जी,
1: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
0: बिल्कुल, करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
0: जी।
3: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
0: जी।
3: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं, उसका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
0: जी, जी, जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुख आसन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
0: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
0: बहुत अच्छा सवाल,
1: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं

0: तो उनको करने होते हैं। पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
1: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
0: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
3: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। और खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी।
4: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
3: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका।
5: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल से रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेनर का लिया मैंने, देखकर हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या।

0: या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
1: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
2: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
1: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है, मैंने बोला ना कि कई लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
2: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
3: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
2: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। इस कार्यक्रम की श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम की आज हम आपको सुनवा रहे हैं 15वीं कड़ी।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
4: धन्यवाद।
3: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
4: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
3: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
4: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1.13 करोड़ हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ DUSIM के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, DUSIM के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं, बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में चार वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
3: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
4: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली

0: गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं। और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RRTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RRTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55

0: है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो तीन शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम वर्ग।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जो फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी, जिसको गुड़गांव कह न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1, अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2, टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले

0: सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर दो बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1-2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं, दूसरी चीज ये जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहाँ का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है, पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन

आप सुन रहे थे कार्यक्रम 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के श्रृंखला कार्यक्रम की 15वीं कड़ी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:36 हुए हैं। पेश है आप श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी।

ये पहला गाना फिल्म प्रतिज्ञा से हमने लिया है। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। जिला छत्रपति साभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, शुभानपुर कटोरिया, खजांची टोला से। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शहादत अली, सालिक शहादत, सिदरा शहादत और शाहीन परवीन ने। ग्राम पोस्ट गोराडी, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं डॉक्टर हेमंत कुमार, आनंद प्रियदर्शनी एवं नीलेश प्रियदर्शनी। मधेपुरा से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं संगम कुमारी और ऋषभ राज। जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं अभिजीत भावसार, पेमिला भावसार और राकेश सन्नी देओल और इनके परिवार के सभी लोग। चांदपुर गोगरी जिला खगड़िया से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं जानकी प्रसाद मंडल, रीता देवी, रेखा पूनम, नंदू मंडल और उनके घर के सभी सदस्य। लालूचक भागलपुर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं सागर बादल, चेतना, गायत्री देवी, विष्णु कुमार चौधरी और रामदेव प्रसाद चौधरी। उत्तम नगर नई दिल्ली से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं गौरव मदन, भीखनपुर भट्टा रोड भागलपुर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं गणेश पासवान और सुधा पासवान। मुंदीचक भागलपुर से इस गीत को सुनवाने के लिए हमें लिख भेजा है दिलीप कुमार सोनी ने। ममलखा लैलक से आप हैं विनोद यादव। सहरसा से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं राधे विद्यार्थी। और भागलपुर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं हेमंत कुमार। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

किशोर कुमार का गाया फिल्म रोटी का एक गीत सुनते हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें अपने फरमाइश लिख भेजी है आप श्रोताओं ने। रतलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से आप हैं हर्षिता परमेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। नील कोठी मोहल्ला साहेबगंज भागलपुर से आप हैं छोटू सृष्टि, मोहित राज, सोनम और डॉक्टर सुभट्ट कुमार मंडल। बड़ी खंजरपुर भागलपुर से आप हैं भाई उल्फराज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली सिटीजन और सादाब। धुरैया गंगदौरी से ये पत्र है, लिखने वाले हैं राम विलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कावित्री देवी, तनुजा और सान देव हरि। मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन, डोलू और इनके परिवार के सभी सदस्य। बैजानी चौबे टोला से ये पत्र है, लिखने वाले हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा साहब जी, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कुक्कू, चीकू, पवन, कल्लू, मल्लू, सोनी, नीतू, मीतू, ईशु, अन्नू और आया। नाथनगर रोड भागलपुर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं गोपाल प्रसाद साह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम बात से ये पत्र है, लिखने वाले हैं राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी बाबू, कंचन, डब्लू, बबली, फुच्चन और बाबू। बक्सर बिहार से ये पत्र है, लिखने वाले हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी और डब्लू अंसारी। सैनिक रेडियो श्रोता संघ धनकुंड बबूरा से ये पत्र है, लिखने वाले मोहम्मद परवेज आलम, हुसन आरस, मोहम्मद रियाज, अनाया परवेज, आतिफ परवेज और इनके परिवार के सभी सदस्य। सामीरपुर बक्सर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं आरएस अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी और सोनम आदिव। बड़ी गोविंदपुर जालमार जमालपुर मुंगेर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं मुकेश कुमार, परवीन, बबलू, राजेश, जितेंद्र, जीवन, मनोज, दीपक, विवेक, मनोहर, अनिल, हिमांशु, कौशल, विजय, प्रफुल्ल, मोहन और इनके सभी दोस्त। मुजाहिदपुर पूरबटोला भागलपुर से ये पत्र आया, लिखने वाले हैं मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, सोनम, शबनम, जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरबाज खान और अयाज खान। और ये पत्र है बसवारा पुंसिया से, लिखने वाले हैं पवन कुमार सिंह, सचिन, छोटू राजा, सौरभ और गोलू। तो आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर किशोर कुमार का गाया सुनते हैं फिल्म रोटी का ये गीत।

0: मिले।
1: मोहम्मद रफी को अब आइए सुनते हैं फिल्म रूप तेरा मस्ताना में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत के सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप श्रोता। जिल रूट जालंधर से आप हैं मीना कौर, ममता कौर। खंडवे से ये है संदीप कौर और दुर्गा कौर। बिहार स्टेट डुमराव से ये पत्राय लिखने वाले हैं वली उल्लाह अंसारी। छत्तीसगढ़ से ये पत्राय लिखने वाले हैं प्रभा जयपुरिया और अशोक जाटव। पुराना तालाब डुमराव से ये पत्राय लिखने वाले हैं वलीउल्लाह अंसारी, उस्मा नाज। जेल रोड बक्सर से ये पत्राय लिखने वाले हैं एसडी राज अंसारी, सुल्तान अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। इंदिरा चौक दिल्ली से ये पत्राय लिखने वाले हैं अजीम बाकर, महिरा अजीम और नगमा अजीम। चंपानगर से ये पत्राय है लिखने वाले हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। ततारपुर से ये पत्राय लिखने वाले हैं नवा कौसर, अरशान अहमद, जरीश अहमद और हाजिक अहमद। भानपुर भोपाल से ये पत्र है लिखने वाले हैं रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमांशु विश्वकर्मा और योगिता विश्वकर्मा। गांधी चौक रोपड़ राजस्थान से ये पत्र आया है लिखने वाले हैं मीका वीरक, बलविंदर वीरक, जितेंद्र वीरक और हरदीप वीरक। और ये पत्र आया है साहेबगंज भागलपुर से, लिखने वाले हैं छोटू, सृष्टि और मोहित।

और अंत में आपको सुनवाते हैं अलका यागी का गाया फिल्म सूर्या का एक गीत। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप श्रोता। सहलबाग भागलपुर से हैं आप अभिजीत, अभिषेक, सोनू, मोनू, पारस, आदित्य, प्रीति और मोनू। दिल्ली शहर से हीना नाज, आबिदा और फातिमा नाज। सुल्तानगंज सीतारामपुर से प्रमोद पासवान, सुष्मिता सागर, दीपा करीना और सूरज। भट्टा बाजार पूर्णिया से लीनू, नीशू और उनके मम्मी पापा। कुनौनी बांका से डब्लू बब्लू, नीपू, चंदा और ललन। और आप हैं ग्राम कुड़रो से पप्पू, लीली, आपरा, वैष्णो और कौशिक। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुने कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने

0: बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजरायल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: इन द फर्स्ट विजिट टू द यूरोपियन नेशन बाय एन इंडियन प्राइम

0: U.S. and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है. मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है. अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया. वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
1: दिस इज आकाशवाणी. द न्यूज रेड बाय किरण झा.

0: कल प्रातः 5:48 पर हम आपकी सेवा में एक बार
1: पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: इन द फर्स्ट विजिट टू द यूरोपियन नेशन बाय एन इंडियन प्राइम